ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि तदनुसार 2 जून 2026। इस समय सुबह की 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे एपिसोड संख्या 14। मुख्य गायक स्वर है उत्तरा केलकर की और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उन सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी युवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे की 6:15 हो रहे हैं। सुविचार। सरल सहज बालक की भांति ईश्वर से भेंट की जानी चाहिए, तभी भक्ति का प्रथम द्वार खुलता है और आगे की यात्रा आरंभ हो सकती है। इस सुविचार के बाद आइए सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

आत्मा के आंगन परमात्मा है और हमारा आचरण परमात्मा के प्रति नेह के फूल। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे की 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म पाकीज़ा से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत की बोल कमल अमरोही की और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी

फिल्म संगीत का ये गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म मशाल से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीत के बोल जावेद के और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर के।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए श्रोताओं, फिल्म ताजमहल से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल साहिर के और संगीत रोशन का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुने श्रोताओं फिल्म लम्हे से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों के, गीत की बोल आनंद बख्शी के, संगीत शिव हरिका।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी

531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी से ये टकरार किसके लिए, जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, फिर ये अहंकार किसके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जिनमें बातें आपकी और हमारी और साथ खूबसूरत से नगमों का। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं इस पहली गीत के साथ।

दोस्तों, हम सभी जिस वास्तविक दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं। मगर आज की दुनिया में एक और ऐसी आभासी दुनिया से भी हम घिरे होते हैं जो बहुत बड़ी है, जिनमें हम कुछ को जानते हैं और बहुत कुछ लोगों को ना तो हम जानते हैं ना पहचानते हैं, जहाँ खतरे भी बहुत तरीके से होते हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर किसी अजनबी या किसी ऑनलाइन दोस्त से बात करना बेहद खतरनाक भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर को यूज़ करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी बेहद आवश्यक है। तो बात आज इसी सोशल मीडिया पर लेकिन फिलहाल के लिए ये गीत।

दोस्तों, आजकल हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया जो है हमारा अभिन्न हिस्सा बन गया है। हमारे पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं रहती है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सूचनाओं से घिरे होते हैं हम, और ऐसे में कई बार हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं या फिर कहें कि कोई झूठी या अप्रामाणिक या गुमराह करने वाली सूचनाओं को भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर उनका जो है शिकार भी हो जाते हैं। हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि आजकल पोस्ट कर दी जाती है। भले ही आप खुद को निजता के मामले में कितना ही जागरूक समझते हों, लेकिन प्लेटफॉर्म के मालिक अक्सर अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं, इसलिए लगातार सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए जिन्हें सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए। और क्या है वे चीज़ें बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।

दोस्तों, बात हम सोशल मीडिया के प्रति हमारी सावधानियों की कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जो भी जानकारी हम साझा करते हैं उसके बारे में हमें सावधान ज़रूर रहना चाहिए। जी हाँ, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आप कहाँ पर है, घर का पता या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर्स, इनका खुलासा जहाँ तक हो ना करें। आप जितनी अधिक जानकारी साझा करते हैं, आपकी पहचान चोरी होने का

खतरा उतना ही बढ़ भी जाता है। आप जिन सोशल मीडिया चैनल्स का यूज़ करते हैं उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स से भी आप परिचित रहें, और यह जो है नियंत्रित करने के लिए भी आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग रखें कि कौन क्या देख सकता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आजकल हम सभी देखते हैं कि हमारे फोन्स में एकदम से कोई लिंक जो है हमारे सामने आता है, तो कोई भी लिंक पर क्लिक करते समय सावधानी ज़रूर बरतें। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जो है नियमित रूप से हैक होते रहते हैं। ऐसी भाषा या सामग्री पर ध्यान दें जो आपके मित्र द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री से मेल न खाती हो। साथ ही एक मजबूत पासवर्ड का प्रयोग जरूर करें। पासवर्ड जितना लंबा होगा, सुरक्षा आपकी उतनी ही अधिक होती है। साथ ही अपने प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए भी अलग अलग पासवर्ड्स का यूज़ करें और अपनी सुरक्षा संबंधी सेटिंग्स का भी समय समय पर ध्यान रखें और उनको अपडेट भी करते रहें।

दोस्तों बात हम सोशल मीडिया और उससे जुड़ी सावधानियों की कर रहे हैं, तो इसी की तरफ बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमारी पहचान जो है वो हमेशा सीमित होनी चाहिए। जी हाँ, धोखाधड़ी करने वाले हमेशा आपके

सीमित होनी चाहिए। या धोखाधड़ी करने वाले हमेशा आपके बारे में छोटी छोटी जानकारियों की तलाश में रहते हैं, जिन्हें जोड़कर वे आपकी पहचान का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। वे इस जानकारी का इस्तेमाल आपके नाम पर क्रेडिट के लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन खाते को भी हैक कर सकते हैं और कई तरह से जो है इसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जहां जा रहे हैं, आप कहां पर हैं, इस तरह की चीज़ें भी पोस्ट करना आपके और आपके परिवार के लिए जो है खतरा बन सकती है।

दोस्तों, ऑनलाइन खतरों की हम बात करें तो आजकल इसका कोई भी सीमित तरीका नहीं है। जी हाँ, और इसी के अंतर्गत चलते एक बड़ा खतरा हमारे सामने लोकेशन ट्रेस करने से भी आ सकता है। जी हाँ, लोकेशन बताना, जैसा कि बताया गया कि साइबर अपराध और शारीरिक अपराध के बीच एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ वे आपसे आपस में जुड़ जाते हैं। जी हाँ, और ये बिंदु अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। यदि किसी अपराधी को पता चल जाए कि कोई व्यक्ति घर पर अकेला है या किसी सुनसान इलाके में घूम रहा है या उसकी संपत्ति खाली हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जहां तक संभव हो अपनी लोकेशन की जानकारी गुप्त रखें और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लोकेशन शेयर करने में भी

0: थोड़ी सी सतर्कता जरूर अपनाएं।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा ऐसी जिंदगी में कर।

और दोस्तों, इन्हीं बातों और गीतों के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातें और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों

0: की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप

0: अब बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन फ्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव फाइनलाइज्ड मोस्ट एलिमेंट्स of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against

0: होती है पुराने संगीत और पुराने लोगों की।
1: कुछ नई कुछ पुरानी, बस यही है नमस्कार की कहानी। तो बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर करनी है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जो कि इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र के साथ।
0: और दस्तूर को निभाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय करवाते हैं हमारी सार्थक टीम से। ट्रांसमीटर से हमारे साथ हैं पीके सेन और राय सिंह राव।
1: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं विक्रम सिंह भाटी।
0: एचपीटी पे उद्घोषक हैं आकांक्षा वैष्णव।
1: एफएम के कंसोल से हमारा साथ दे रही हैं अनाउंसर ऑन ड्यूटी कविता सांखला।
0: और हमारे इस मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के प्रस्तुतकर्ता और संयोजक हैं राजेश लामरोड।
1: और आज के नमस्कार के सफर में आपके साथ हैं आपके हम सफर, मेरे साथ है कविता जी पवार
0: और मेरे साथ है स्वाति भंसाली।
1: बहुत सारी बातें दिल में हैं, लेकिन आपके साथ भी उन्हें साझा करेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: स्वागत अभिनंदन।
1: तो दोस्तों ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं इसमें थोड़ी सी ज्ञान की रोशनी, थोड़ा सा इतिहास टटोलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं गीत नए नवेले की, तो कहीं चर्चा

0: कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न, अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी। 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इधर अभियान के तहत सवाईमाधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: कार्यक्रम के तहत जल पूजन, नहरों खालों की सफाई, डीसिल्टिंग, श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे। विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया।
2: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। जिला मुख्यालय के अलावा रामसर, चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और 3 टप्पर उड़ गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: एक बार फिर आप सभी का स्वागत मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और दोस्तों, जैसे कि ये गतिविधियां आप तक पहुंची हैं, उससे ये बात तो साफ हो गई कि हम अकेले नहीं हैं राजस्थान में, स्वाति, कि जो गरज, आंधी, बारिश इन सब से जूझ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। पहले एक समय था कि हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी, तो हम प्रिपेयर भी नहीं होते थे उसके लिए। लेकिन आजकल तो हमें समय से पहले उसकी जानकारी मिल जाती है।
4: बिल्कुल, मौसम विभाग भी अलर्ट हो गया है और तकनीकी जो है वो इतनी विकसित हो गई है कि हमें ये सारी सूचनाएं पहले मिल जाती हैं ताकि

0: माल का नुकसान भी कम है।
1: नुकसान ना हो, हम अपने अपने और अपनों का ख्याल रख
0: हाँ
1: पाए, है ना। और ये जो चल रहा है आंधी तूफान, ये आगामी मतलब एक आध दिन तक और भी चल सकता है,
0: बिल्कुल
1: ऐसी सूचना है। तो खास बात में हम आज यही लेकर आए हैं अपने दोस्तों के लिए।
0: बिल्कुल। और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ऊपर जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है और इसके साथ ही जो चक्रवाती परिसंचरण बना है और ऊपरी हवा का दबाव तंत्र बना है, उसी के कारण राजस्थान में ये मौसम तेजी से बदला है और यही आंधी बारिश और गरज चमक की जो गतिविधियां हैं वो इसी का नतीजा है। तो देखिए ना, हमारे यहाँ पर हम चाहे कितनी भी सफाई के प्रति अलर्ट हो जाए, लेकिन एक आंधी आते ही वो सारी सफाइयां जो है वो धरी की धरी रह जाती
1: हाँ,
0: है,
1: उस पर धूल फिर जाती
0: धूल फिर
1: है।
0: जाती है। लेकिन हम रेगिस्तान के
1: ये
0: बाशिंदे हैं तो
1: हमें
0: धूल
1: धूल
0: तो
1: से एतराज भी नहीं है, और
0: बिल्कुल
1: हम अपनी इम्यूनिटी को इतना रखते हैं बूस्ट
0: हाँ
1: की, हम आंधी तूफान से घबराते भी नहीं
0: हाँ
1: है।
0: क्योंकि
1: लेकिन हाँ, ये बात है कि जहाँ आंधी तूफान आते हैं सफाई का तो मसला बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी से राहत मिलती है, वो भी एक बहुत अच्छी
0: बिल्कुल।
1: बात लगती
0: और
1: है।
0: किसानों को खास तौर पर विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर उनकी फसल इस वक्त कट चुकी है तो उसको बिल्कुल भी खुले में नहीं रखना है और पशुओं को भी सुरक्षित छेद से बांध के रखना है ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो सके।
1: मानवीय प्रयासों को
0: हाँ
1: करते रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हम जानते हैं कि
0: हाँ।
1: हमारे प्रयास से हम खुद का नुकसान होने से बच सकते हैं।
0: और एक नुकसान से हम और बच सकते हैं, अगर इस बदलते मौसम में अगर हमारे घर में पालतू पशु हैं तो उनका भी हम ध्यान रखें। आज हमारी काम की बात भी यही है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, अचानक गर्मी है और आंधी बारिश आ जाती है, तो पेट्स जो है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं
1: और वो
0: मौसम के प्रति।
1: परेशान भी होते हैं, वो
0: हाँ
1: बता भी नहीं
0: बता
1: पाते हैं
0: नहीं
1: अपनी
0: सकते
1: परेशानी, है ना। तो गर्मी से जब इंसान परेशान होता है तो जाहिर सी बात है पशु पक्षी सभी परेशान होते
0: हाँ
1: हैं, और पालतू जानवर जो कि हैं उनके शरीर का तापमान इंसान की तुलना में ज्यादा होता है, शरीर पर बाल भी होते हैं, तो उनकी त्वचा तक ठंडक नहीं पहुंच पाती है, और इसलिए वो परेशान भी होते हैं, और बीमारियों का खतरा भी उनका जो है ऐसे मौसम में दुगना हो जाता
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: तो इनमें हीट स्ट्रोक, टिक्स और डैंड्रफ सहित फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने पेट्स को नहलाने का एक रूटीन सेट करें और इससे पालतू जानवर आपका साफ सुथरा तो रहेगा ही, साथ ही जो गर्मी के कारण और मौसम के कारण होने वाली परेशानियां हैं उनसे भी वो बचे रहेंगे।
1: और साथ ही आप ये कर सकते हैं कि जैसे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह उनके
0: बिल्कुल
1: शरीर को ठंडा रखने के लिए भी आप उनके खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर
0: हाँ।
1: सकते
0: और
1: हैं।
0: सिर्फ पेट्स ही नहीं, आप चाहें तो जो सड़क पे पशु पक्षी हैं उनके लिए भी परिंदों की व्यवस्था, उनके लिए भी चारे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तो पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका सामाजिक सरोकार भी
1: और
0: पूरा होगा।
1: सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा
0: बिल्कुल
1: उसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगा
0: हाँ।
1: सकता।
0: और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन तब भी मिलता है जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। तो जानेंगे इतिहास के आईने में क्या है आज का दिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इतिहास के पन्नों में आज की तारीख 1953 की दृष्टि से देखें तो वैश्विक स्तर पर 1953 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था औपचारिक रूप से, और उन्हें ताज पहनाया गया था, और वो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कॉमनवेल्थ देशों की रानी बनी थी। और साथ ही ये पहला मौका था जब किसी राज्याभिषेक का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था।
0: और साल 2013-14 ये वो साल था जब भारत के संदर्भ में ये दिन आज का जो 2 जून का है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तेलंगाना राज्य जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था आज ही के दिन, और इसीलिए हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है आज ही के दिन यानी कि 2 जून को। तो बातें आपसे शेयर कर रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये जो खूबसूरत गीत आपकी नजर हो रहा है वो खूबसूरत आवाज सुमन कल्याणपुर की, और ये आवाज जो है अभी 2 दिन पहले ही इस दुनिया को शरीर से भले ही अलविदा कह गई, लेकिन उनके गाए गीत आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं।

0: श्रोताओं, आप और हम इस वक्त बने हुए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और आज है मंगलवार। हर मंगलवार सप्ताह विशेष में हम बात करते हैं खेलों की। आओ जाने खेल सेगमेंट में आज एक ऐसे खेल के बारे में जानकारी, देखने में तो बहुत ही रोमांचक और जब खेलने जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और चुनौतीपूर्ण। ये खेल है बोसा बॉल। आधुनिक खेल है, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, जिमनास्टिक हुआ और संगीत हुआ, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? बोसा बॉल। क्योंकि इसी से इसकी अलग एक पहचान है और आज ये देश खेल जो है वो दुनिया के कई देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
1: वैसे कहते हैं कि इस खेल की शुरुआत जो है 2005 में हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और उनका इस खेल का एक उद्देश्य था खेल को विकसित करना, मनोरंजन, संगीत और खेल की भावना को एक साथ जोड़ सके, पारंपरिक खेलों की सीमाओं में आगे बढ़ते हुए एक नया प्रारूप इन्होंने तैयार किया था जो खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, और इस खेल को जो है वो फिलिप एकमेंस ने विकसित किया था और वो चाहते थे कि एक अलग तरह का खेल, एक अलग तरह का अनुभव लोगों को दिया जाए। वैसे अगर इसके मैदान की बात करूं तो सामान्य खेल मैदानों से बिल्कुल अलग है और इसे एक बड़े फुलाए जाने वाले एयर कोर्ट पर खेला जाता है और कोर्ट के दोनों तरफ लगाया जाता है एक एक ट्रेम्पोलिन, और ये ट्रेम्पोलिन खिलाड़ियों को ऊंची छलांग लगाने में करता है सहायता। हवा में कलाबाजियां भी खाते हैं और गेंद को प्रतिद्वंदी टीम के क्षेत्र में भेज सकते हैं। बीचों बीच में वॉलीबॉल की तरह एक नेट भी लगा होता है दोनों टीमों को, जो अलग करता है। हर टीम में होते हैं 3 से 5 खिलाड़ी और सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है इस खेल का वो है कि विरोधी टीम के क्षेत्र में हम बॉल को इस तरह से गिराएं कि दूसरी टीम उसे वापस बिल्कुल भी ना लौटा सके।
1: इसमें खिलाड़ी अपने हाथों, पैरों, सिर, कंधों और शरीर के अन्य हिस्सों का उपयोग भी कर सकते हैं और इस खेल के नियम भी काफी दिलचस्प है दोस्तों। हर एक टीम को गेंद के विरोधी क्षेत्र में भेजने से पहले ज्यादा से ज्यादा 8 स्पर्श करने की अनुमति होती है। हालांकि किसी एक खिलाड़ी द्वारा लगातार 2 बार गेंद छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ियों को टीम वर्क, संतुलन और समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ट्रेम्पोलिन का उपयोग किया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को ऊंची छलांग लगाकर शानदार स्मैश और कलात्मक शॉट लगाने का अवसर मिलता है। बोसा बॉल

0: अंक प्राप्त करने की प्रणाली भी एकदम विशेष है।
1: और अगर इसकी सबसे खासियत जो है इस खेल की, वो है संगीत का उपयोग। खेल के दौरान मैदान में संगीत लगातार बजता रहता है और एक विशेष अधिकारी जिसे हम कहते हैं सांबा रेफरी, वो खेल के संचालन के साथ साथ संगीत और इस पूरे वातावरण को नियंत्रित करता है। तो खिलाड़ी और दर्शक दोनों ही रहते हैं ऊर्जावान। और एक खेल प्रतियोगिता तो है ही, लेकिन ये एक सांस्कृतिक उत्सव के समान हो जाता है बोसा बॉल का प्रदर्शन।
0: और इसीलिए ये भावनात्मक रूप से टीम वर्क के साथ खिलाड़ियों को एक मजबूती प्रदान करता है। और ये केवल शारीरिक कौशल का ही नाम नहीं है बोसा बॉल, ये मानसिक सतर्कता और सामूहिक सहयोग की भी परीक्षा लेता है।
1: और सिर्फ ये यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में और एशिया में ही नहीं, बल्कि अब पूरे विश्व में ये लोकप्रिय हो रहा है। और खासतौर पर ये समुद्र तटों के आसपास खेल उत्सवों में, सांस्कृतिक आयोजनों में भी इस खेल को प्रदर्शित किया जा सकता है। और भारत में भी अभी, हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की और प्रचलित होने की पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। और यंगस्टर्स को तो खास तौर पर यह खेल बहुत आकर्षित कर रहा है।
0: और हम भी ऐसी संभावनाओं को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि एक फिटनेस का बहुत अच्छा माध्यम बन सकती है।
1: बिल्कुल, और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। आप बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत गीत के लिए।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के इस प्रोग्राम में आखिरी लोक रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, कविता शर्मा की गाई हुई।

श्रोताओं, कविता शर्मा के गाए हुए इस लोक रंग के साथ ही लोक संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन की 12:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको ये पहली रचना हम सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की गाई हुई।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, पंकज उदास की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई हुई।

0: अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस प्रोग्राम में आइए, आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की गाई हुई।

0: श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन 5 के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी

0: गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया इन दिन आप खेती बाड़ी का काम काज कर रहे हैं, लगो लग किसान भाई की कोशिश आई जरा कि भाई वे टेमो टेम खेती बाड़ी से संबंधित जिसका काम काज है वे करे और साथ ही पशुपालन रो काम काज भी करिया करे। किसान भाइया आज आपने जानकारी दे रहा वहां क्या भाई टमाटर की फसल महीने कीट और रोगारो जी को नियंत्रण है वो आप किन तरह से रख सका। टमाटर महीने एक सफेद मक्खी जिन्हें आप थ्रिप्स और हरो तेलो कीट जी को है लागिया करे तो इन कीट से शिशु और वयस्क जी का दोनों ही जी का है एक क्रिया करे के टमाटर जी की पत्तियां होया करे उनरो रस आप रे चोसिया करे और जिन कारण कहीं वे के बाद महीने काली जी की फंपुदी है आ जावे जिनसु पतियां जी की है प्रकाश संश्लेषण जी को कामकाज है कर नहीं पावे। सफेद मक्खी कीटू वायरस जनित जी की पत्ती मरोड़क जी की बीमारी है आ आप रे फैल जाए करे। हमें बात आवे कि भाई इन कीट रो खात्मा आप किन तरह से कर सका। टमाटर की फसल रोपण पहले ज पौधा ने 30 मिनट ताई कहीं करे के इमिडा क्लोप्रिड 1 मिली लीटर प्रति 3 लीटर पानी रे महीने डुबो न रखना चाहिए और साथे नीम बीज रो अर्क 4% या डाई मिथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से छिड़काव आपने करना चाहिए। साथे मिथाइल डेमिटोन 30 EC 2 मिलीलीटर पानी रो छिड़काव भी आपने करना चाहिए। एक टमाटर महीने फल छेदक कीट जी को है वो भी लाग जाए करे। कीटरी सुंडिया फलारे महीने छेद कर दे और माइलोजी को पदार्थ है आप खावता रहे। कीट सुंडी फलारे साथ साथ जिकी टमाटर की पतियां वे उन्हें भी नुकसान पहुंचाया करे। इन तरह से फलारी जिकी गुणवत्ता है टमाटरी अभी खराब हो जाया करे। किसान भाई हमें कहीं कर सके है कि भाई कीटरे प्रबंधन वास्ते टमाटरी प्रति 15 जिकी पंक्तियां वे उनरे माते आप रे फसल ट्रैप रूप रे महीने गेंदरी एक पंक्ति आप रे लगा दे हाथे। सुंडिया वाला जी का फल है और कीट ने आप रे पकड़ पराना पा नष्ट कर दा और साथ ही नीम बीज जी को अर्क है वो 5% या NPB 250 मिली प्रति हेक्टर या BT 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या इंडोसल्फान 35 EC 3 मिली लीटर प्रति लीटर या डेल्टा मेथरीन 2.5 EC 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना परा और किसान भाई छिड़काव करें। साथ ही 30 EC 1 मिली लीटर या थायो मिथोक्शल 25 WG 0.4 ग्राम प्रति लीटर दरों आप छिड़काव करें। किसान भैया आपने जानकारी दी रहा हमें सुनाओ आपने बढ़िया सी गीत रचना।

किसान भैया आपा जानकारी ले लिया था कि भाई टमाटर की फसल में इन जी का कीट और रोग लाग जाए करे उन्हों प्रबंधन और नियंत्रण आपा किन तरह से कर सका। हमें एक पछेती क्षीणता जिन्हें आपा अंगमारी कहवा या झुलसा रोग भी आपा क्या करा। इन रोग रा मुख्य लक्षण आ है कि पतियारा जी का किनारा वे वोटू बूटा धब्बा पड़ना हरू हो जा और पतिया ने आप ढकले और भूरे रंगरा बैंगनी काला रंगरा जी का है माथे बन जा आपरे। नम वातावरण में पतिया ने जी की निचली सतह है वोटे आपरे नील लोहित या बैंगनी रंगरा धब्बा जी का है वह परिधि ऊपर और भी कवक ज्यू सफेद ज्यू वर्दी करता थका आपने दिखा करे। तो इन रोगारी जी की रोकथाम है वह किसान भाई किन तरह से कर सके क्या भाई जिन बगत टमाटर माते इन रोग रा लक्षण दिखे उन बगत 3-4 छिड़काव जी का है वह कैप्ट फल 80%

डब्ल्यूपी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर, मैनकोजेब डाइथेन M45 75% डब्ल्यूपी 2.5 ग्राम। तो जी को छिड़काव है किसान भाई 10 ले 15 दिन अंतराल माते आप रहे करे ताकि ओ जी को अंगमारी जी को रोग है वो खत्म हो जाया करे। किसान भाई आ ही जानकारी के टमाटर री फसल मैंने आपा कीट और रोग रो जी को नियंत्रण है वो किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने सीख दिराओ राम राम।

किसान साथी अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम कृषि जगत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1:15 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका का।

0: नारी के हौसलों की कहानी है ये, सपनों को सच करने की रवानी है ये।
1: हर सखी की आवाज को पहचान देता नारी वाटिका सिर्फ कार्यक्रम नहीं, एक जिंदगानी है ये।
0: मैं आपकी सखी वंदना और मेरे साथ हैं
1: मकसूदन, लेकर आए हैं आपका अपना, आपका सबका खास प्रोग्राम नारी वाटिका।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम का संयोजन किया है मनीष सोलंकी ने और प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।

0: सखियों जब ख्वाब आंखों में बसते हैं तो राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं।
1: जब उन ख्वाबों के साथ हौसला जुड़ जाए ना, तो मंजिल भी कदम चूमने लगती है।
0: जिंदगी की हर कामयाबी हकीकत में एक ऐसे ही ख्वाब की कहानी होती है जिसे किसी ने पूरे यकीन के साथ सींचा हो।
1: उस कहानी में कभी संघर्ष की धूप होती है, कभी उम्मीद की छांव, लेकिन सफर कभी रुकता नहीं है।
0: और शायद इसी सफर की खूबसूरती उसे एक साधारण कहानी से प्रेरणा की दास्तान बना देती है।
1: आज नारीवाटिका में हम ऐसी ही कुछ दास्तानों के पन्ने पलटेंगे, जिनमें शक्ति भी है, समर्पण भी, और कामयाबी की वो रोशनी भी जो दूसरों को सही रास्ता दिखाती है।
0: तो आइए मिलकर महसूस करते हैं हौसलों की उस उड़ान को जिसने अनगिनत महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का साहस दिया।

0: सखियों, हर कामयाबी की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। कोई भी इंसान जन्म से सफल नहीं होता, बल्कि उसके दिल में पलने वाला एक छोटा सा सपना ही उसे मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। आज जो लोग ऊंचाइयों पर नजर आते हैं ना, कभी उन्होंने भी अपनी आंखों में एक मासूम सा ख्वाब सजाया था और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, सब्र किया और लगन का दामन थाम लिया।
1: बिल्कुल, ख्वाब इंसान को जीने का मकसद देते हैं। वे उसे मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं। राह में रुकावटें तो आती ही हैं ना वंदना, कभी नाकामी मिलती है, कभी लोग ना उम्मीद भी हो जाते हैं, लेकिन जो अपने ख्वाबों पर यकीन बनाए रखते हैं ना, वो एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। इसीलिए ख्वाब देखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ख्वाब के कोई भी सफ़र शुरू नहीं होता।
0: इसीलिए मकसूदन कहा भी गया है, हर ख्वाब एक नई कहानी की शुरुआत होता है और हर कहानी में कामयाबी का एक खूबसूरत अध्याय छिपा होता है।
1: ख्वाब देखिए, उन पर यकीन रखिए, मेहनत को अपना हम सफर बनाइए।
0: फिर देखिए, वही ख्वाब एक दिन आपकी पहचान बन जाएंगे।

0: सखियों सपनों को हकीकत में कैसे बदलें, उनसे जुड़ी कई सफल महिलाएं हैं जो जीवन में मेहनत करके सफलता का मुकाम हासिल करती है। ऐसी ही एक महिला समाज सेवी अलका पुरोहित फोन आउट के माध्यम से अपनी कहानी अपनी जुबानी आज हमारे साथ साझा करेगी। उनसे फोन आउट बातचीत कर रही है मेरी सखी वंदना शर्मा।
1: नमस्कार अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के नारीवाटिका कार्यक्रम में।
2: नमस्ते वंदना जी
1: कैसी हैं अलका जी आप?
2: जी। बस बढ़िया, आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं और मेरी सखियां उत्साहित हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे अलका जी, अपने बारे में बताइए।
2: आप भी नमस्ते और सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी
2: मेरा नाम अलका पुरोहित है और मैं 2006 से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया मैंने,
1: जी
2: तो आज लगभग मेरे को 20 साल हो गए। कई महिलाओं के साथ कई अलग अलग एनजीओ में हम मैंने काम किया है
1: जी
2: और वहीं से मेरी एक नई शुरुआत हुई।
1: बिल्कुल। अलका जी, सफ़र की शुरुआत तो 2006 से हुई आपने बताया, लेकिन शुरुआत का क्या कारण रहा, क्या मोटिवेशन रहा, या फिर क्या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि आप इस सफ़र पे चल पड़े?
2: ये जो मेरी शुरुआत तो मैंने 2006 से की, लेकिन 2014 में एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का,
1: जी
2: जहाँ मुझे एज ए सिंगल मदर बनना पड़ा।
1: जी
2: और उस सफर के दौरान मैंने कई बार महिलाओं से बात किया, तो जो चुनौतियां मेरे सामने आई थी वही
1: जी
2: चुनौतियां उन बहनों के सामने भी थी। और एज ए एक महिला होने के नाते
1: जी
2: सामाजिक आर्थिक ये सभी चुनौतियां बहुत है, जो हमें भावनात्मक तौर पे कहीं कमजोर भी करती है और कहीं स्ट्रांग भी करती है।
1: जी
2: तो सबसे पहले तो ये था कि मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मेरी जो लाइफ थी वो जीरो से वापस मेरे को स्टार्ट करना था,
1: जी
2: और जीरो से स्टार्ट करने में मेरे साथ दो बच्चे थे, बच्चों की परवरिश का भी जिम्मेदारी था, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी
1: बिल्कुल
2: दवाई, उनका जो भी रोजमर्रा का खर्चा है वो सभी, और प्लस घर को संभालना और जॉब करना,
1: जी
2: ये सभी मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
1: जी
2: और इसी चुनौती में मैंने ये देखा कि काफी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम सामने फेस करना पड़ रहा है,
1: जी
2: तो कुछ अलग ऐसा किया जाए जिससे कि इनकम सोर्स बढ़े, ताकि कम से कम मैं अपनी जरूरतें या अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर पाऊं।
1: जी बिल्कुल। साथ ही साथ महिलाओं की मदद भी करनी थी आपको और अपना भी
2: जी
1: जीवन यापन
2: बिल्कुल
1: करना था, तो
2: जी
1: दोनों
2: जी
1: चीज़ों को आपने संतुलन बिठाया और आपने अपना, जो कहते हैं ना, पैशन भी पूरा किया और एक अपना इनकम का सोर्स भी जनरेट किया।
2: बिल्कुल
1: जी, तो जब शुरुआत में आपने ये कार्य मतलब अपना शुरू किया, क्योंकि एनजीओ एक फील्ड वर्क है, फील्ड में जाना पड़ता है आना पड़ता है, और एज अ सिंगल मदर आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
2: सबसे पहला तो होता है कि बच्चों की सुरक्षा की चिंता,
1: जी
2: क्योंकि एज ए सिंगल मदर होने के नाते बच्चों को अकेला छोड़ के जाना, और मेरा काम भी ऐसा रहता कि मतलब केवल जोधपुर ही नहीं, जोधपुर से बाहर भी कई बार मेरे को बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता, तो
1: जी
2: ये एक मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती आती थी।
1: जी
2: तो उसके लिए मेरे को दोनों के बीच में सामंजस्य

0: से बैठाना, कभी किसी को जैसे परिवार में और भी कोई सदस्य है तो उनको बुला के फिर उनके साथ उनको छोड़ना, उसके बाद मेरे को जॉब पे जाना।
1: जी
0: तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं बच्चों की भी, ऐसा नहीं हो मैं अपना काम करने के चक्कर में बच्चों की परवरिश में कोई कमी रह जाए।
1: बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना,
0: बात बहुत
1: जहाँ
0: दूर।
1: जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। अगर हम कुछ ठान लेते हैं करने का, तो कुछ ना कुछ भगवान भी जो होता है वो आगे हमारी मदद करता है और हमारे लिए रास्ते बनते चले जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जी, कुछ समाज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से भी बहुत सारी महिलाएं जो आगे बढ़ने से डरती हैं, तो उनके बारे में आप क्या
0: एक्चुअली
1: कहेंगी?
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी महिला है, जब भी वो कुछ करने के लिए बाहर निकलेगी,
1: जी
0: तो आप भी जानते हैं हमारा जो समाज है वो
1: जी
0: पुरुष प्रधान है,
1: बिल्कुल
0: तो पुरुषों के लिए कोई भी समय सीमा कुछ भी तय नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के लिए समय और सीमा दोनों ही तय होती है। कि अगर एक पुरुष जॉब करने जा रहा है, अगर वो संडे को भी जॉब करता है, तो हर किसी की मानसिकता है बेचारा कितना काम कर रहा है कि इसको संडे को भी काम करना है। और अगर
1: बिल्कुल
0: एक महिला काम करने जाती है तो क्या, अच्छा एक संडे भी इसको ऑफ नहीं मिलेगा, पता नहीं सारा काम इसी के ऊपर है।
1: परिवार के लिए एक दिन भी नहीं है इनके पास।
0: बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है।
1: जी
0: अब उसके लिए भी वही चीजें हैं कि उसको भी जॉब करना है और उसके जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना है, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है।
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन इस चीज को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर टाइमिंग की फाउंडेशन, अगर आपका 6 बजे ऑफ हो गया, कभी काम एक्स्ट्रा आपको करना है, तो
1: जी
0: 1 घंटे या 2 घंटे एक्स्ट्रा, इतना लेट कैसे हो गया? आपको पता नहीं घर पे कितना काम है,
1: जी
0: आपको समय पे आना दिख नहीं रहा है,
1: बिल्कुल
0: समा बाहर कैसे चल रहा है। अरे भाई,
1: जी
0: वो की वही चीज है, पुरुष के लिए भी होती थी,
1: जी
0: लेकिन उनके लिए नहीं, बोलकर
1: उनका
0: महिलाओं
1: ओवर
0: के लिए
1: टाइम
0: ये
1: होता है।
0: चीजें ज्यादा।
1: जी बिल्कुल। तो अलका जी, मतलब ये सारी चीज़ें हर महिला की ज़िंदगी में आती हैं, ये सारी मुश्किलें
0: बिल्कुल
1: आती हैं, तो बस ये है कि आप ये क्या मैसेज देंगे कि भाई कैसे इन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ें?
0: कई बार सुन के बहुत दुखी भी होती थी, लेकिन फिर भी क्या है, जब मैं अपने बच्चों को देखती कि मेरे को इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, और आज मैं खुद ही बहुत खुश हूँ कि मेरा
1: जी
0: बड़ा वाला बच्चा भी बीटेक कर रहा है और
1: जी
0: छोटा वाला बच्चा भी आज बीटेक कर रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: तो ये जो मैंने लाइफ में अचीवमेंट किया है, और आने वाली, जो मेरे पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं, लेकिन ये दो बड़ी पूंजी है जो
1: बिल्कुल
0: मैंने अपनी इकट्ठी की है, जो आने वाले समय में मेरे लिए बहुत
1: जी
0: खुशी की बात है। कि आज ये नहीं कह सकती कि मैंने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाई मैं।
1: बिल्कुल। और बहुत सारी सखियां आपको सुन रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि हम मदद करते हैं या आप उनको स्किल उनके डेवलप करवाते हैं, तो वो आप कैसे करवाते हैं?
0: इसकी शुरुआत मैं अपने से ही करूंगी कि जब मेरे पास इनकम सोर्स एक ही था और उससे मेरी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, तो
1: जी
0: ऐसे ही रूटीन में हम घर में अचार सभी बहनें डालती हैं, जैसे मैंने भी डाला।
1: जी
0: और मैंने जब डाला तो मैंने सबसे पहले नींबू का अचार डाला था जो बिना ऑयल का था, और एक
1: बिल्कुल
0: नींबू की चटनी बनाई थी।
1: जी
0: वो नींबू का अचार जब मैंने और बहनों को, या मेरे अड़ोस पड़ोस और जो मेरे रिश्तेदार थे,
1: जी
0: उन सभी को चखाया, तो उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि वो कब रूटीन की चीज मेरे एक बिजनेस में तब्दील हो गई,
1: जी
0: मैं भी नहीं समझ पाई। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये अपने, और हर महिला में कुछ ना कुछ स्किल छुपा होता है,
1: जी बिल्कुल
0: बस उसे पहचानने की जरूरत है और उसे बाहर एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत रहती है।
1: बिल्कुल। अलका जी, अचार तो हमारी घर की सभी महिलाएं, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो सभी डालती हैं, तो आपके अचार में ऐसी क्या खास बात थी कि सबको इतना अच्छा लगा?
0: एक्चुअली एक तो सबसे पहले के विदाउट ऑयल का अचार था, नींबू वाला अचार, जो सबसे पहला मेरा सेलिंग प्रोडक्ट था।
1: जी
0: और उसमें ये था कि उसकी ये कि वो 1 साल 2 साल तक बिना किसी के प्रिजर्वेटिव वो
1: जी
0: खराब नहीं होता, और टेस्ट में इतना अच्छा कि
1: जी
0: लोग बार बार डिमांड करते हैं, और अभी भी मेरे पास समय कम होता है वो डिमांड पूरी करने के लिए, लेकिन उनका डिमांड आता है कि नहीं मैडम प्लीज हमें बना के दीजिए। और
1: तो
0: इसी के साथ में हमने एक बनाई थी नींबू की चटनी, जो कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, तो
1: जी
0: लोगों ने उसे बहुत, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि
1: जी
0: उसको खाने से जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो रही थी, तो
1: जी बिल्कुल
0: इन दोनों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिला। उसके अलावा और भी अचार हम लोग डालते, लेकिन ये हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है।
1: जी। अगर हमारी सखियां भी इस तरह की स्किल सीखना चाहें, तो वो किस तरह से सरकारी योजनाओं से कनेक्ट कर सकती हैं?
0: अभी एक्चुअल में गवर्नमेंट ने खुद ने स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला

0: रखे हैं बहुत सारे,
1: जी
0: और काफी एनजीओज हैं जो वो जाते हैं और इन स्किल डेवलपमेंट को लेके जिसको जिस तरीके की नीड है, जैसे कुछ पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं,
1: जी
0: कुछ कढ़ाई का काम सीखना चाहती है, तो वो उनके फॉर्म भरवाते हैं और
1: जी
0: उस फॉर्म से एक ग्रुप बनता है और ग्रुप से उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन से वो स्किल सीख सकती है। और
1: जी
0: उसके बाद उनको साथ में ये भी सिखाया जाता है कि आपको इस हुनर को आपको कैसे बाहर लेके आना है और
1: जी
0: कैसे इसको बिजनेस के रूप में आपको आगे बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, कि स्किल तो हमने सीख ली लेकिन उसको हम कैसे आगे उससे अर्निंग कैसे करनी है, इसमें भी सरकार कुछ मदद करती है।
0: हाँ बिल्कुल, आपको सिखाती है कि भाई आप अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म भी देती है। अब
1: जी
0: जैसे आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे मेले लगते हैं,
1: जी जी
0: जिसमें
1: जी
0: जो बहनें हाथ का काम करती है या जो भी वो अपना काम कर रही है, तो उनके लिए उनको शॉप अलॉट होती है, तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है,
1: जी बिल्कुल
0: तो उस प्लेटफॉर्म पे वो
1: हाँ, ये
0: अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है और
1: फ्री
0: उनसे
1: ऑफ
0: उनकी एक
1: कॉस्ट
0: अच्छी
1: उनके लिए
0: अर्निंग
1: होता
0: होती
1: है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई, अपने ज़िंदगी की चुनौतियां हमसे साझा की, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे आपकी पसंदीदा गीत की फरमाइश जानना चाहूँगी।
0: है। वैसे मेरा जो फरमाइश गीत है वो आखिर क्यों पिक्चर जो है
1: जी
0: उसका सॉन्ग है, कि एक अंधेरा लाख सितारे,
1: जी
0: और ये मूवी ही मेरे लिए बहुत इंस्पायर करती है मेरे को। और इसका एक और गाना है
1: जी
0: कि औरत है वो कमजोर नहीं, तो
1: जी
0: इन दोनों ही गानों को मैं, लेकिन मैं महिलाओं के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी ये एक
1: एक
0: अंधेरा लाख सितारे। धन्यवाद,
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने फोन आउट के जरिए समाज सेवी अलका पुरोहित से बातचीत सुनी। उनकी कहानी जो है हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देती है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वंदना, सपनों का क्या मतलब होता है?
6: सपने वो ख्याल होते हैं जो हमारे वर्तमान से हटकर हमें भविष्य की दुनिया को देखने की ताकत देते हैं।
5: मुझे लगता है ना कि सपने दिल में उगने वाले उम्मीद के पहले फूल होते हैं।
6: और उम्मीद ही इंसान को मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना सिखाती है।
5: देखो ना, कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग उन्हें हकीकत बनाने का हौसला भी तो रखते हैं।
6: और हौसला और मेहनत मिल जाए ना तो मुकसुदन, तो सपने सिर्फ ख्याल नहीं रहते, वो मंजिल बन जाते हैं।
5: सपने हमें बताते हैं कि हम क्या बन सकते हैं,
6: और संघर्ष हमें वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं।
5: यानी सपना सफर की शुरुआत है
6: और कामयाबी उस सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव।
5: इसीलिए सपने देखना कभी मत छोड़िए,
6: क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही तो होती है।

0: जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हौसलों से मुश्किलों को भी मात दे देते हैं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी भी ऐसी ही एक रूह को छू जाने वाली दास्तान है।
1: अरुणिमा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी जिंदगी भी आम लोगों की तरह चल रही थी, मगर एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे में उनका एक पैर चला गया। यह ऐसा वक्त था जब कोई भी इंसान मायूस हो सकता था, अपने ख्वाबों से किनारा कर सकता था, मगर अरुणिमा ने हार मानने के बजाय अपनी तकलीफ को ही अपनी ताकत बना दिया।
0: और

0: कृत्रिम पैर के सहारे चलना ही एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इससे भी बड़ा ख्वाब देख दुनिया को सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर डाला। लोगों ने हैरत से देखा, कुछ ने इसे नामुमकिन कहा, लेकिन अरुणिमा के इरादे बुलंद थे।
1: सख्त मेहनत, लगन और अटूट हौसले के दम पर उन्होंने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आखिरकार वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आसान का रास्ता रोक नहीं सकती।
0: अरुणिमा की दास्तान हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ हालातों की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये हौसले, सब्र और मेहनत का खूबसूरत नतीजा होती है।
1: इसीलिए कहते भी हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हौसलों की अपनी ही उड़ान होती है।
0: गिरकर संभल जाना ही असली फतह है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं का नाम याद रखती है जो हालात के आगे झुकते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बदलने का हौसला भी रखते हैं।

0: सखियों कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी हौसला और आत्मविश्वास होते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर इंसान को खुद पर भरोसा ही ना हो ना, तो वो पहला कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता।
0: सही कहा, रास्ते की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा डर होता है। हमारे मन में जो भय होता है वो हमें कामयाबी से रोकता है ना।
1: बिल्कुल, और जब हौसला बुलंद हो ना, तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि हौसलों के आगे दीवार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आत्मविश्वास वह ताकत है जो इंसान को गिरकर भी दोबारा खड़ा होना सिखाती है।
0: जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो हालात का इंतजार नहीं करता बल्कि हालात ही बदल देता है।
1: और यही कोशिश धीरे धीरे सफलता का रास्ता बनाती है।
0: इसीलिए तो कहा गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है।
1: इसीलिए तो कहते हैं ना मुकसुदन, कि आत्मविश्वास इंसान के व्यक्तित्व का वह दीपक होता है जो निराशा के अंधेरे में भी रोशनी कर देता है।
0: इसीलिए तो सफलता पाने से पहले अपने जो हौसले हैं ना उसको बहुत मजबूत बनाए रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दीजिए।
0: क्योंकि सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं।
1: बल्कि अपने मन के विश्वास से ही होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

0: वंदना, जीवन में हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। उसके बीच कई चुनौतियां होती है तो कई रुकावटें भी तो आती है।
1: बिल्कुल मकसूदन, चुनौतियां ही जो होती है ना, वो इंसान की असली परीक्षा लेती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने धैर्यवान, साहसी और आत्मविश्वासी हैं।
0: सही कहा, कई बार लोग मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन जो उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है ना?
1: और यही संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। अगर जीवन में चुनौतियां ना हो तो शायद हमें अपनी सक्षमताओं का एहसास भी ना होगा।
0: बिल्कुल, मुश्किलें रास्ते की पहचान होती है, हौसले इंसान की शान होती है। रुकना नहीं तो थक कर ए मुसाफिर, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की जान होती है।
1: बिल्कुल, वास्तव में हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति उनसे सीखता है वही आगे चलकर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है।
0: और कभी असफलता मिलती है, कभी लोगों की आलोचना, तो कभी समय भी तो हमारा साथ नहीं देता है ना। लेकिन आत्मविश्वास हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम फिर से प्रयास कर सकते हैं।
1: और यही हौसला हमें गिरकर दोबारा उठना सिखाता है। यही गुण इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। इसलिए कहते हैं, आंधियां चाहे कितनी भी तेज चलें, दिए अपना जलना नहीं छोड़ते। जो रखते हैं खुद पर भरोसा, वो मंजिल की राह बदलना नहीं छोड़ते।

0: सखियों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर बड़े नाम याद आते हैं, लेकिन हमारे आसपास भी ऐसी सफल महिलाएं हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना वंदना?
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने हौसले और मेहनत से दूसरों के लिए मिसाल बन जाती हैं।
0: देखो ना, हमारे खेतों में काम करने वाली किसान महिलाएं इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वे घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं और खेतों का काम भी, है ना?
1: और देखो ना, तेज धूप हो या कड़ाके की सर्दी, वे पूरे समर्पण के साथ काम करती हैं और परिवार को आर्थिक मजबूती का आधार बनती हैं।
0: और इसी तरह हमारी शिक्षिकाएं भी समाज को एक नई दिशा दे रही है।
1: शिक्षिका केवल पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाती, बल्कि बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और अच्छे संस्कारों का भी निर्माण करती हैं।
0: बिल्कुल, हौसलों की धूप में जो हर दिन निखरती है वो साधारण महिलाएं ही असाधारण बनती है।
1: वास्तव में सफलता केवल बड़े मंचों पर दिखाई देने वाली उपलब्धियों का नाम नहीं है। अपने परिवार को संभालना, बच्चों को शिक्षित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी सफलता की निशानी है।
0: हमारे आसपास की महिलाएं हमें ये सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।
1: जी, और यही महिलाएं मकसूदन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनती हैं। न कोई शोर, न कोई पहचान की चाह, फिर भी रोशन करती है जीवन की हर राह।
0: क्या बात, इसीलिए हमें अपने आसपास की उन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए जो चुपचाप अपने काम करती रहती है और सफलता का परचम लिखती रहती है।
1: क्योंकि प्रेरणा हमेशा दूर नहीं होती, कई बार वह हमारे घर, हमारे विद्यालय और हमारे खेतों में भी मिल जाती है।

0: तो सखियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का।
1: आज के कार्यक्रम में कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया गजेंद्र सिंह जालसू ने, एचपीटी पर थे सुनील जयपाल, सीएल सोनी, और कंसोल से प्यारे प्यारे गीतों को आप तक पहुंचाया उगम सिंह जी ने।
0: नमस्कार।

0: आधी आबादी नारी शक्ति अभी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी जोधपुर है। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले

0: की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह

0: ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए

0: न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन तथ्य कुछ और है
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है
2: जी। तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए?
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50

0: मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है,
1: जी
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।

0: du coin.
1: De Marseille, dans le sud de la France.
2: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं. आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है. और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे.

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक

0: भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से

0: जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
2: चलो लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
4: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
4: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
4: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
4: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
4: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
4: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
4: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर

0: टीचर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पास्टर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ,
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
5: देखिए आप,
6: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा
5: अच्छा,
6: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का

0: पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजने वाले हैं। अब हमारी ये पहली सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानि 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए इस सभा में सबसे पहले सुने युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हाँ जी, स्वागत है आपका आज की फिर एक नई शाम, नई बात और नए गानों के साथ। और आज का दिन बड़ा ही खास, क्योंकि अंताक्षरी प्रोग्राम आज आप और हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं, और जहाँ बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी बातें, और गाने आज जो हैं वो आप गुनगुनाएंगे, और जो भी आपका मनपसंद सॉन्ग है वो आज के अंताक्षरी प्रोग्राम में आप हमारे साथ गुनगुना सकते हैं, जो कि हम पहले तीसरे और पांचवें मंगलवार अंताक्षरी प्रोग्राम जो आयोजित करते हैं। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ है।
1: हाँ जी, मैं हूँ आप लोगों का रेडियो दोस्त नीतीश। और बिल्कुल ट्यूसडे स्पेशल युववाणी चल रहा है, और युववाणी हर शाम नए नए प्रोग्राम लेके आती रहती है। और आज

बिल्कुल राहुल ने सही कहा, आज यूथ अंताक्षरी का प्रोग्राम है और जितने भी युवा साथी हैं जो हमें सुन पा रहे हैं और जो गाने के शौकीन हैं वो आज की शाम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं बेहतरीन से गाने। कुछ गाने हमने प्लेलिस्ट में ऐड किए, कुछ गाने वो गाएंगे और हम वो गाने प्ले करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं शाम के पहले म्यूजिकल ट्रैक की और इस गाने के बाद बताएंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप और हम मिलकर इस शाम को बना सकते हैं यादगार अपने गानों के साथ।

0: कहता हूँ, भी आपने सुना बैरन सॉन्ग और राहुल, इस गाने को सुनते ही बस मुझे चीज फील होती है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक है ना ढेर सारी भाषाएं हैं, लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज है वो चाहे किसी भी भाषा में बना हो हम उसे आसानी से फील कर सकते हैं, आसानी से उसका म्यूजिक हम समझ सकते हैं। और जो आज का जो कारवा है वो अंताक्षरी का है, और इसी कारवा को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे, हमारे स्टूडियो की लाइन्स वो है खुल चुकी है और जितने भी युवा साथी हमें सुन पा रहे हैं और जो गाने के शौकीन है वो आज की शाम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा राहुल?
1: जुड़ने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना, एक नंबर डायल करने, और नंबर में बता देता हूँ आपको 02915253300, और हमारे जो दूसरे नंबर है वो है 02915253400। इन नंबर्स के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी जो प्रोग्राम है यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने आज के शाम का नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक आपके एल्बम के लिए।

0: क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आप फिलहाल एंजॉय कर चुके हैं और भी मजेदार से गाने आने वाले हैं। अगर आप भी गुनगुनाना चाहते हैं तो आज की शाम हमारे साथ जुड़कर गुनगुना सकते हैं। यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम है जो कि आप कनेक्ट हो सकते हैं 02915253300 02915253300 पर। मजेदार सी शाम है, इस आवाज का नाम राहुल है और आज मेरे साथ
1: जी युवा साथियों, मैं हूं आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश। और राहुल, गाने जब प्ले होते हैं ना उनकी वाइब ही कुछ अलग होती है। डांस और सिंगिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली अंदर से निकल ही जाती है, भले उनको डांस करना आता हो या गाना गुनगुनाना आता हो या नहीं हो, पर ये चीजें हैं जो आसानी से बाहर आ जाती है। बस इसी डर को आपको बाहर निकालना है और हमारे साथ आज की शाम जुड़ना है।
0: तो डायल कर सकते हैं 02915253300 02915253300 पर।

0: वेलकम बैक इट जॉब का एक बार फिर से इस मज़ेदार से गाने के बाद। और हो क्या रहा है ना कि भैया छुट्टियों का चल रहा है माहौल, और छुट्टियों के माहौल में हम इंडियंस को क्या है ना कि घूमने का बड़ा शौक है। कभी हम नानी के चले जाते हैं, कभी दादी के चले जाते हैं, और कुछ और नहीं सोचता है तो पहाड़ों में निकल जाते हैं। तो घूमने के लिए सबसे बड़ा जो हमें एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिला है रेलवे। और रेलवे के लिए कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप कहीं बाहर गाँव घूमने जाते हैं किसी तरह के जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, यार मैं कैसे ट्रेवल करूँगा, जनरल कंपार्टमेंट जाना पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाऊँगा। तो किस तरीके के टिकट आप किस ऐप पर कर सकते हो बुकिंग, जो कि रेलवे के ऑफिशियल ऐप है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो है IRCTC और एक है रेल वन ऐप। ये दोनों ही ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा देते हैं। और रिजर्वेशन या और तत्काल टिकट अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो IRCTC को ज़्यादा भरोसेमंद माना गया है। इस पर आप जो हैं वो तत्काल और रिजर्वेशन के टिकट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। और यदि आप रिजर्व टिकट के साथ जनरल प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की लाइव लोकेशन या फिर कोई शिकायत दर्ज करना है, खाना ऑर्डर करने जैसी आपको सुविधा चाहिए, तो आप इनका जो एप्लीकेशन है रेल वन, इस पर जाकर जो है वो इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगता है कि यार तत्काल टिकट हमें विंडो पर जाके बुक कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है साहब। थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। IRCTC ऐप पर जाकर आप जो है वो अपनी ID पहले से ही लॉग इन करके रखें। जब आपको पता चले कि भैया AC की जो है वो बुकिंग इतने बजे ऑन होती है, उसी दौरान उसी वक्त जाकर आप जो है वो एप्लीकेशन पे जाकर तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है वो आपके खुद के हाथ में, बस आपको थोड़ा सा उसको सीखने की, उस पर काम करने की जरूरत है। एप्लीकेशन है IRCTC और दूसरा है रेलवे। फिलहाल के लिए अंताक्षरी प्रोग्राम चल रहा है साहब, प्रोग्राम युवाणी में।
1: बिल्कुल राहुल, अंताक्षरी प्रोग्राम चल रहा है और जितने भी युवा साथी है अभी तक वो जुड़े नहीं है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस युवाणी प्रोग्राम में जुड़े और अंताक्षरी हमारे साथ खेले, गुनगुनाए वो गाने जो उनके दिल के बहुत करीब है, या फिर वो गाने जो वो हमेशा स्कूल कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठ के गुनगुनाते रहते। बस आपको एक सिंपल सा काम करना, हमारे स्टूडियो में एक नंबर है, वो नंबर आपको डायल करना, और वो नंबर है 02912553300। और जो हमारे दूसरे नंबर है वो है 02912554300। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आपका रेडियो दोस्त नितेश और मेरे साथ राहुल, और हम दोनों आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: मेघानी के बीच जो है वो हमारे साथ कॉलर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300 और 02915254300 पर। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अरविंद चौधरी है, मैं सालोड़ी गांव से बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सालोड़ी गांव से।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, अभी तक तो हम स्कूल जाता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात, स्कूल जाते हो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो फिलहाल?
1: मैं अभी 9th में आया हूँ।
0: अरे वाह, 9th में आए हो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यूथ अंताक्षरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपनी आवाज में एक छोटा सा कोई भी अंतरा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन पसंदीदा गाना है, वो गुनगुना दीजिए।
1: मारो तेजर सुपर डुपर।
0: बिल्कुल, गा दीजिए आप, थोड़ा सा गुनगुनाना
1: पर गवाओगे क्या?
0: जी। बिल्कुल, यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम है, युवाओं को यहाँ पर गाने का मौका मिलता है। और आप जो है वो एक कोई भी छोटा सा अंतरा, आपका मन पसंदीदा गाना गा सकते हैं। बिल्कुल गाइए।
1: मारो तो रखवालो, मारो तेजा जी महाराज रे, अरविंद मांगिया मन सब कुछ दियो रखे मारी लाज, मारो तेजल सुपर डुपर।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गाने का शौक रखते हैं, थोड़ा बहुत गाते हैं आप?
1: मैं गाता हूँ दोस्तों के साथ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो अब आपको एक छोटा सा अंतरा सुनाएंगे हम, उसमें से फिर आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द पर आपको एक गाना गुनगुनाना है, ठीक है? तो मैं आपको छोटा सा अंतरा सुना रहा हूँ, गाने का एक छोटा सा फेज, उसमें से आपको शब्द मैं चुन के दूंगा, आपको सिर्फ एक गाना सुनना है छोटा सा, है ना?

0: ओके, तो आपने गाना सुना
1: हाँ
0: और आपका शब्द है तेरे बिना।
1: तेरे बिन, तेरे बिन मैं नहीं, मेरे बिन तू नहीं। ये सॉन्ग है, पूरा आता नहीं है, मैंने सुना एक बार।
0: अच्छा, सुना है? कौन सी फिल्म का गाना है ये?
1: ये इतना तो पता नहीं है।
0: अच्छा, नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हुए यूथ अंताक्षरी में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर और भी लिसनर्स हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, यूथ अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं।
2: हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 02912553300, और जो हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो है 02912554300। आप भी अरविंद के जैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और गुनगुना सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी एक गीत। फिलहाल एंजॉय करेंगे ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: इस बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक के साथ साथ जो आज के हमारे अगले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनका स्वागत करते हैं यूथ अंताक्षरी में। हेलो
1: जी नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश भाभी है।
0: जी ओम प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: प्रधानमंत्री संजय गांधी कॉलोनी जोधपुर से।
0: जी तो चलिए फिर जो आपके दिल की बहुत करीब जो गाना है उसका एक अंतरा हमें सुना दीजिए सबसे पहले।
1: जी कोई सा भी गाना चलेगा?
0: हाँ, कोई भी गाना चलेगा।
1: तुम दिल की धड़कन में देते हो मेरी इन सांसों से कहते हो।
2: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हुए अंताक्षरी में, आपने पार्टिसिपेट किया, फिर से जुड़िएगा। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300 02915253300 पर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने आज की शाम का अगला म्यूजिकल ट्रैक आपकी नजरिए रहा साहब।

0: राहुल, इस रोमांटिक गाने के साथ ही साथ हमारे जो अगले कॉलर है वो हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए युद्ध अंताक्षरी में करते सबसे पहले स्वागत उनका।
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम रणवीर सिंह, कभी गांधी से।
1: अरे वाह रणवीर सिंह, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गांधी बालेसर।
1: अरे बालेसर, क्या बात है, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
2: मैं तो सिंगर हूँ।
1: अच्छा सिंगर हैं, क्या बात है, कब से गा रहे हैं, मतलब कहाँ, कब शौक लगा आपको गाने का?
2: 4 साल।
1: 4 साल से गा रहे हैं। अच्छा, कहीं
2: जागरण
1: स्टेज पे और कहीं परफॉर्म किया है?
2: नहीं, हम जागरण में जाते हैं, लिखी गाती है।
1: अच्छा वाह, जागरण में जाते हैं और मतलब देते हैं परफॉर्मेंस अपनी, गाते हैं ना। तो
2: हाँ,
1: कौन सा आपका फेवरेट है, कोई भी गाना, कोई भी गीत अगर आप गाना चाहें तो बिल्कुल सुना दीजिए, एक छोटा सा अंतरा उसका एक।
2: मन मारो डरते करणी जी बदबरावे, मारो डरते करणी जी बदबरावे, मन रे मोती पागणी रे माई ना, मन रे में चिंता बैणी रे मोरा कठोर पदारिया, मन भारो डरते मैया जीव घबरावे।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार, मतलब आपने जो है आपका कॉन्फिडेंस इस गाने में नजर आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं मतलब परफॉर्म तो किया ही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यू अंताक्षरी में आपने पार्टिसिपेट किया। अगर मैं आपको एक छोटा सा अंतरा सुनाऊंगा गाने का, उस अंतरे में से आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द पर आपको फिर एक हिंदी गाना गाना, आप गा सकते हैं?
2: ठीक है,
1: ठीक है, आप शब्द, आप ये अंतरा सुनिए पहले।

0: आपका शब्द है चेहरा।
1: तेरा
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा तो दूसरा शब्द कोई भी लिखो।
0: इस पे नहीं आ रहा कोई भी गाना?
1: हाँ तेरा पर कभी सुना भी नहीं
0: नहीं आ रहा पक्का?
1: पता।
0: ओके, तो आपका दूसरा शब्द है चांद।
1: चांद
0: यस।

0: तुम आ ना सके तो गली में आधा निकला।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। युद्ध अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से पार्टिसिपेट कीजिएगा युद्ध अंताक्षरी में। और फिलहाल के लिए अगर आप भी जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं 02915353 02915353 पर।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: बेहतरीन सा गाना चल रहा है, मौसम का जादू है मितवा। और पिछले 2 दिनों से जो बरसात आई है उसने वाकई जो गर्मी थी ना उसको बहुत कम कर दिया, और गाना बेहतरीन सा चल रहा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहुल हमारे साथ कोई यूं तो जुड़े या फिर ना जुड़े। तो चलिए अगले जो लिसनर है वो हमसे एक जुड़ चुके हैं। तो हेलो, हाँ
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: संदीप।
0: संदीप जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जोधपुर।
0: क्या बात है, आप गाने के शौक रखते हैं?
1: हाँ, सिंगिंग करते हैं।
0: क्या बात है, तो बिल्कुल सही प्रोग्राम आप ट्यून इन किया और सही प्रोग्राम में आप जुड़े हैं। यूथ अंताक्षरी चल रहा है, तो जल्दी से अपना फेवरेट एक गाना हमें सुना दीजिए।
1: सुनाई
0: जी
1: एक गाना है, दिल है के मानता नहीं, ओ दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है कसम मोहब्बत ये जान

0: क्या बात है, क्या बात है। मतलब क्लैपिंग तो बजती है, बनती है साहब, आपकी इस आवाज़ के लिए, इस कॉन्फिडेंस के लिए, इन जो सुर आपने लगाए इस गाने में, उसके लिए बहुत शानदार, बहुत खूब। कब से गा रहे हैं आप? अपने बारे में कुछ बताइए, कब से शौक लगा गाने का, मतलब क्या सीन है ये?
1: मैं बचपन से गा रहा हूँ।
0: बचपन से गा रहे हो? कहाँ परफॉर्म किया है, कहीं फैमिली प्रोग्राम में, कहीं ऐसे कुछ?
1: नहीं, मैं तो प्रतियोगिता में जाता हूँ, कंपटीशन होता है कहीं, जैसे जैसे बाड़मेर हो गया,
0: अच्छा,
1: जयपुर हो गया,
0: क्या
1: ओपन
0: बात
1: ओपन
0: है। माइक में आप पार्टिसिपेट करते हैं?
1: रतनाडा हो गया।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आपको एक ना एक अंतरा सुनाएंगे हम, उसमें से फिर आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द पर आपको एक गाना गाना है, ठीक है?
1: कोई भी शब्द है?
0: हाँ, मैं शब्द आपको चुन के दूंगा, उस शब्द पर आपको गाना गुनगुनाना है। पहले आप ये अंतरा सुनिए।

0: जी हाँ, आपने गाना सुना? हेलो, अच्छे से सुना पूरा गाना? तो आपका जो शब्द है वो है खूबसूरत।
1: तो एक शब्द बताइए इसके।
0: खूबसूरत, आपका शब्द है खूबसूरत।
1: तो खा के गाऊं?
0: हाँ, आप खा से गा दीजिए या फिर ऐसा कोई गाना जिसमें खूब शब्द आता हो।
1: याद आ रहा है,
0: चलो खा से गा दीजिए। बिल्कुल गाइए आप।
1: खामोशिया अल्फाज है, तुम इनको गुनाओ कभी। पूरा याद नहीं आ रहा इनको।
0: अरे वाह, कोई नहीं, जो आपको पूरा भी याद आ रहा है एक वो गाना सुना दीजिए आप। आपको कौन सा गाना अच्छे से याद आ रहा है, आप अच्छे से अंतरा उसका गा सकते हैं? कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग याद आ रहा है अभी का? ट्रेंडिंग सॉन्ग कोई
1: क्या
0: कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग याद आ रहा है?
1: कब याद नहीं आ रहा?
0: कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग, दूसरा दूसरे शब्द पर भी हो सकता है वो, जो आप अच्छा गा सकते हैं।
1: सोचने का वक्त नहीं।
0: अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हुए, और आपकी आवाज़ सच में बहुत खूबसूरत है। आप इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और गानों का कारोबार चलता रहेगा प्रोग्राम युवाणी में। ये रहा।

0: राहुल, इस बेहतरीन से गाने के साथ साथ जो हमारे आज के जो अगली कॉलर है वो हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से उनका स्वागत करते हैं यूथ अंताक्षरी में। हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: सर, प्रधानों से मनोहर बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, हैंडीक्राफ्ट का ही काम करता हूँ मैं।
0: तो चलिए फिर, जो आपके दिल की,
1: सुनता रहता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो आपके दिल की बेहद करीब है जो गाना आज की शाम इस यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम में हम सब
1: सर,
0: सुनने के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल सर, राजस्थानी गाना सुनाऊंगा मैं।
0: जी
1: ब्याह बिंदनी बिल्कुल मैं तो कद परना सी बाबलियो सगड़ा रे साथी परण्यार मैं तो रे हो कवारो टाबरियो सगड़ा रे साथी परण्यार मैं तो रे हो कवारो टाबरियो। बस शॉर्ट सुनाऊंगा सर।
2: शॉर्ट में सुनाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज में अपने गाना गाया है। गाने के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर आपको गाना अच्छा लग रहा है?
1: बिल्कुल सर, मैं काफी पुराना श्रोता भी हूँ और
2: अच्छा,
1: सुनता रहता हूँ।
2: जी
1: नए नए अच्छे कॉलर भी आते हैं, उनकी भी बातें सुनता रहता हूँ।
2: जी
1: वो प्रोग्राम पहले FM वगैरह भी चलता था, बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अब वो पहले वाले प्रोग्राम
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया।
1: मैं चाहूंगा कि फिर से कोई टॉपिक पे
2: जरूर जरूर जरूर जरूर। फिलहाल यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम चल रहा है सर, ठीक है? आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम में आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिएगा और फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे। और भी लिसनर्स या और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915253300 पर।

0: FM 102.1 आप एंजॉय कर रहे हैं और प्रोग्राम युवाणी एंजॉय कर रहे हैं राहुल और नीतीश के साथ। और मंगलवार स्पेशल यूथ अंताक्षरी चल रहा है और जितने भी युवा साथी जो गाने के शौकीन हैं वो आज शाम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल उन्हें क्या करना होगा?
1: उन्हें करना होगा एक नंबर डायल करने, और नंबर है 02-91-25-53-300। दूसरे नंबर हमारे हैं जो वो हैं 02-91-25-54-300। और देखिए जो नंबर डायल करते करते नंबर डायल लोग कर भी लिया है, और हमारे साथ जो है वो अगले कॉलर अब जुड़ चुके हैं। चलिए जी, इनसे इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले नाम पूछ लिया जाए, तो क्या नाम है आपका?
2: हाँ सर, मेरा नाम दिनेश है। सर
1: दिनेश, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: सर मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ, जालू गेट से।
1: जोधपुर जालूरी गेट से, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए।
2: सर मैं, मेरा मेकिंग काम है एमराल्ड बनाने का।
1: अच्छा, गाने का शौक कब से रखते हैं आप, मतलब गाना गुनगुनाते हैं?
2: हाँ जी सर, गुनगुनाते हैं, कभी कभी गुनगुना लेते हैं।
1: अच्छा, कभी कभी गा लेते हैं ना। तो चलिए जी अपनी आवाज़ में, और आपका जो फेवरेट मन पसंदीदा गाना कोई है जो आप सुनाना चाहते हैं तो सुना।

0: अच्छा, मेरा फेवरेट गाना।
1: आपका फेवरेट गाना? बिल्कुल
0: हाँ जी, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम तेरे।
1: मैं जान सक हाँ
0: हाँ जी,
1: क्या बात, बिल्कुल गाई गाई, कंटिन्यू रखिए।
0: तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये गाना फेवरेट क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे की?
0: सर, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। हाँ
1: अच्छा, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी।
0: जी, हाँ हाँ जी सर।
1: अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी रियल रियल लाइफ में भी इस स्टोरी से तो कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ?
0: नहीं, सर ऐसा
1: ऐसा
0: कुछ नहीं
1: कुछ नहीं,
0: सर,
1: सिर्फ ये
0: बस
1: फिल्मों।
0: अरेंज मैरिज भी।
1: अच्छा, अरेंज मैरिज जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए जी, युद्धांताक्षरी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लिसनर्स, और भी कॉलर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं नंबर्स पर, जो कि है 02-91-2553-300, और दूसरे नंबर है 02-91-2553-300 पर।

0: राहुल गुमशुदा म्यूजिकल ट्रैक चल रहा है और जो हमारे युवा साथी जो हमारे लिसनर है वो कह भैया आप गुमशुदा ट्रैक भली बजाओ, हम कहीं नहीं गए, हम आपके पास ही है, रेडियो के पास ही है, बस वो डायल कर चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: दीपक पवार सर।
1: दीपक पवार, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ
2: सर
1: बताइए थोड़ा
2: जोधपुर
1: सा।
2: राजस्थान से।
1: अरे वाह, मतलब क्या करते हैं, क्या अपने बारे में कुछ बताइए।
2: सर हैंडीक्राफ्ट का कार्य करते हैं।
1: अच्छा, हैंडीक्राफ्ट का ही कार्य करते हैं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यूथ अंताक्षरी में आज जुड़े आप, अपना मन पसंदीदा, आपकी पसंद का, आपका फेवरेट कोई भी एक गाना गुनगुना दीजिए।
2: सर वी फिल्म का सॉन्ग है
1: बिल्कुल, दिल फिल्म का सॉन्ग, कौन सा गाना चाहेंगे बताइए।
2: सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, बेटी है नींदे और नींदों में सपने, कहीं पे किनारे थे उतर मेरे अपनों से, आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं से, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन।
1: क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत शानदार। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो सपनों की रानी आपको मिल चुकी है
2: हाँ सर
1: इन रियल लाइफ, आपके सपनों की रानी भी क्या आपको मिल चुकी है?
2: मिल चुकी है
1: मिल
2: सर।
1: चुकी है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इसी हाँ का इंतज़ार था, आपने हाँ बता दिया तो दिल और खुश हो चुका है। यूथ अंताक्षरी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दूसरे राउंड में भी हम लेते हैं, आपको एक छोटा सा अंतरा सुनाया जाएगा, उस अंतरे में से आपको एक फिर मैं शब्द दूंगा, उस शब्द पर आपको गाना गाना है, ठीक है?
2: जी सर जी
1: ओके,
2: सर।
1: तो सुनिए ये वाला अंतरा।

0: है दिल।
1: दिल,
0: जी हाँ,
1: दिल दिल दीवाना यार है। अरे यार सॉरी
0: दीपक,
1: यार,
0: जरूरी नहीं है कि दिल शब्द से शुरू हो ये गाना। दिल शब्द गाने के बीच में भी आ सकता है।
1: ऐसा
0: दिल शब्द से तो बहुत सारे गाने, साहब क्या कर रहे हो, इतना अच्छा गाते हो आप तो।
1: सॉरी माइंड में नहीं आ रहे हैं।
0: और जो पहला गाना गाया आपने भी वो बहुत ऊंची सुर वाला गाना गाया, और वो लगता है आपका पसंदीदा था और आप बार बार सुनते थे, तभी आप बिना गलती किए उस गाने को गुनगुना पा रहे थे, इसलिए हमने आपको दूसरे राउंड में लिया है। तो जल्दी से दिल शब्द से गाना गुनगुना दीजिए। दिल से याद नहीं आ रहा है तो एक शब्द और देता हूँ, नजर।
1: नजर,

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ साथ जो हमारे अगले कॉलर है राहुल, वो हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं यू अंताक्षरी में। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यू अंताक्षरी में।
1: मैं इकरामुद्दीन बोल रहा हूँ सर।
0: जी इकरामुद्दीन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी
0: आप?
1: सर, ज्योति नगर चांदना बागर से।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं इकरामुद्दीन जी?
1: सर मैं पंखे कूलर का काम करता हूँ वैसे।
0: जी, तो फिर गाने सुनते होंगे और गाने के शौक रखते होंगे आप।
1: जी,
0: तो बिल्कुल, जो आपके दिल के करीब जो अंतरा है, जो गाना है, वो आप हमें सुना दीजिए।
1: दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।

0: क्या बात है, क्या बात है। आप सैड गाने लगता है सबसे ज्यादा सुनते हैं।
1: जी गाने तो बिल्कुल सर, सुबह शॉप पे आके बैठते हैं ना 10
0: जी
1: से लेके और रात को 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आप ही के प्रोग्राम सुनते हैं सर,
0: जी जी बहुत
1: अलग
0: बहुत
1: अलग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और लगता है आपने जो गाना गाया बहुत ही दिल से गाना गाया है। और आपने गाना सीखा है या फिर ऐसे ही रेडियो पे सुनते सुनते सुनते
1: सर
0: सुनते
1: उसी गाने
0: अभ्यास
1: पे बस
0: करते गए।
1: बैठे बैठे सुनते रहते हैं, उसी से ही गुनगुनाते रहते हैं ना।
0: जी क्या बात है, आपकी
1: ये
0: आवाज
1: तो ठीक है।
0: आवाज में वाकई दम है। चलिए आपको दूसरे राउंड की तरफ लेके चलते, एक अंतरा सुनाते हैं। उस अंतरे में से देंगे आपको एक प्यारा सा शब्द।

0: प्यार किया तो डरना क्या।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही शानदार। आपने सही तरीके से जो है अंताक्षरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, बहुत सुंदर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अगर और भी कॉलर हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब कुछ ही मिनटों का बाकी है। 02915253530, 02915253450 पर।

0: हाँ जी, आपने सुना गाने अच्छे से?
1: जी सर।
0: आपका शब्द है दिल।
1: दिल?
0: जी हाँ,
1: दिल, दिल तो बहुत गाने हैं सर।
0: बिल्कुल, कुछ में से कोई भी एक।
1: दिल की जगह प्यार तो?
0: हाँ, प्यार,
2: हाँ, प्यार, प्यार भी शब्द था। और इकरामुद्दीन जी, ऐसा क्यों होता है जब भी जो गाना
1: तो
2: हमें चलिए चलिए सुनाइए, आप सुनाइए।
1: तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप के आए भरना क्या जब

0: और हमारे साथ जो है वो अगले कॉलर इस गाने के बीच में खूबसूरत से गाने के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम लोकेंद्र चौधरी है।
0: लोकेंद्र चौधरी, यूथ अंताक्षरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी आवाज में कोई भी एक प्यारा सा नगमा सुना दो आप सबसे पहले तो।
1: ठीक है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी हो मुश्किल, नैन बजो मैं ये बया ना हो पाए। एक लड़का ने एक लड़की की प्रेम कहानी हो मुश्किल, नैन बजो मैं ये बया ना हो पाए।
0: क्या बात है, क्या आपने बयां कर दी है, मतलब बहुत शानदार तरीके से बयां कर दी।
2: और ये बयां दो लफ्जों में, राहुल ये बयां दो लफ्जों में हो गया। आपने लिरिक्स थोड़ी सी गलत गाई है। लोकेश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: मैं अभी सिक्स्थ क्लास में पढ़ रहा हूँ।
2: क्या बात है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉल कनेक्ट करते ही जो आपने अपना नाम बताया, जिस जोश के साथ और जिस जोश के साथ आपने गाना गाया, वाकई आप तारीफ के काबिल है। तो चलिए आपको फटाफट दूसरे राउंड में लेके चलते, एक प्यारा सा अंतरा सुनाएंगे, उस अंतरे में से देंगे आपको एक प्यारा सा शब्द।
3: ये गाना लिया भाई क्या?

0: ओके, आपने गाना सुना अच्छे से? आपका शब्द है कसम।
1: कसम। तो नहीं आता,
0: नहीं आता। तो कुछ किस शब्द पर आपको एक अच्छा सा गाना याद आ रहा है, वो गाना गुनगुना दीजिए आप जल्दी से।
1: पल पल जिन्न।
0: हाँ बिल्कुल गाइए।

0: इंतजार मेरे बाबू में आ न करके 16 सिंगा, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, शुकू ये दिल क्यों पाता नहीं।
1: आगे गई पूरा गए, अच्छा कर रहे हो आप।
0: इतना ही है।
1: अरे वाह यार क्या बात, जो जितना आपने गाया है ना बहुत खूबसूरत गाया, और आपका जो कॉन्फिडेंस जो इस गाने में और पूरी बातचीत में पूरी कन्वर्सेशन में जो नज़र आ रहा है ना वो बड़ा ही कमाल का है। क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना चाहते हो आगे जाके? हेलो,

0: जी बिल्कुल, आज का जो सफर था प्रोग्राम युवाणी का अंताक्षरी का, जो अब यहीं होता है समाप्त, आज आपके साथ राहुल और इस आवाज का नाम हमारे साथ।
1: जी हाँ श्रोताओ, मैं था आज आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश। और राहुल, आज वाकई बहुत कमाल की आवाज़ें आई है। लोकेश और आदित्य दोनों एक ही लेवल के थे, और जो बेहतरीन गाने गाए वो है संदीप और इकरामुद्दीन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम आप हमारे साथ यूथ अंताक्षरी में जुड़े।
0: जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा।
3: भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
4: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
3: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा

के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको बताते हैं हमारी आज की सभा की शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। पहले सुनिए आज की सभा की शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपनो राजस्थान। शाम 7:30 पर ग्रामीण जनों के लिए कार्यक्रम होगा सीमा डेरी गूंज। इससे पहले शाम 7 सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात 9:15 पर और रात 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

ये थी जानकारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की। और अब आपको बता दें, इस केंद्र से प्रसारित होने वाली दोनों सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम कल रात 9:30 पर सुनना न भूलिएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साहित्य सुधा, इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर गजल सराई सुनिएगा। शीन काफ निजाम कलाकार होंगे।

नमस्कार, इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 8:30। श्री रामचरित मानस सुनना न भूलिएगा सुबह 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन प्रातः 6:15 पर प्रसारित किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर दिन में 1:15 पर होगा। कल इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिएगा विश्व साइकिल दिवस पर श्री खेमराज गुर्जर, साइकिलिस्ट, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर की आराधना जोशी एवं पूनम देवड़ा से बातचीत। प्रस्तुति राजेश लामरोड, संयोजन रहेगा मनीष सोलंकी का। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दिन में 2:30 पर सुनिएगा। युववाणी कार्यक्रम में राजस्थानी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 5:00। चौपाल सजेगी शाम 7:00। 7:30 पर सीमा डेरी गूंज सुनिएगा। रात 10:00 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित दीपक क्षीर सागर का गिटार वादन सुनिएगा। तबले पर संगत रहेगी कपिल वैष्णव की। आप प्रस्तुति देंगे राग बिहाग 3 ताल में और राग भूप 3 ताल में। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने देशगान।

0: दिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः संबोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरबुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् 80+100 दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समय सीमा अध्यर्थना तंत्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलं आपत्काल परिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति, प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जाल माध्यमेन अध्यर्थना प्रणाली योजितास्ति। केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तं अन्तर्जाल माध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्ति समयात् 30 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः संबंधित पक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं 60 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागु, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालये कॉलेजियम इत्यस्य अनुशंसां पालयता यः एव एतेषां नियुक्ति विषयकी स्वीकृति प्रदत्ता। एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अध्यादेशः इत्यस्य प्रतिष्ठापनानन्तरं कृताः सन्ति। अधुना भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सह सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशां स्वीकृता संख्या 34 समेध्य 38 यावत् कृतास्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जर्मनी देश

0: देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मन्त्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉ सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति। अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। डॉ सिंह अकथयत् यत् भारत जर्मनी देशौ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ़ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः। राष्ट्रिय पंचायत पुरस्कार समारोहः श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्य प्रणाली उपलब्धीं चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग इत्यनेन राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेशस्य तटवर्ति क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तितास्ति। कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्र वृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधाररूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् अष्टादशाधिकैकशतं सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही

0: मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39 करोड़ 18 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ादीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्यभर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यह परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7 करोड़ 19 लाख से ज्यादा आभा आईडी

0: भी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1,00,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में यह राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य के ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और

0: और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया। वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉ बी आर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन

0: शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार।

0: આભા આઈડી બનાર દેશમાં દૂજા પાયદાન માથે પુગ્યો અર પ્રદેશમાં આંધી બારિશ ને કારણ આવતા સપ્તાહમાં પારો 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નીચે રહેવાન રા આસાર સમાચાર સાગે મેં સુદર્શન નાહર અરબ સમાચાર વિગતવાર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ નૌજવાના ને દેશ રી તાકત ઉમ્મીદ અર ઉજળા ભવિષ્ય રી નિશાણી બતાયા હૈ વે આજ નઈ દિલ્હી માં જનજાતીય છાત્રવૃત્તિ યોજના નો ફાયદો લેવણ વાળા ને સંબોધિત કર રહી હી રાષ્ટ્રપતિ કહ્યું કે સમાજ રા સગળા તબકા રો માલી તૌર અર ભણાઈ લિખાઈ રા હલકા માય વિકાસ અસલી બરકત હૈ શ્રીમતી મુર્મુ કહ્યું કે વઝીફા રી સરકારી યોજનામાં જનજાતીય સમુદાય રા નૌજવાના ને આલા દરજા રી ભણાઈ લિખાઈ અર મોકા દેર વાની જિંદગી માય બદલાવ લાઈ હૈ વે દેશ માય પ્રતિભા રી પિછાણ પોષણ અર વિકાસ સારું સહી મંચ મુહૈયા કરાવણ રી જરૂરત માથે જોર દીનો રાષ્ટ્રપતિ નૌજવાનો વાની જડાઓ જુડ્યા રહેવણ બાબત કહ્યો
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा सुल्तानपुर समेत तीन ठोड़ा करीब 39 करोड़ 18 लाख रूपया खर्चो कराई चा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामा री शुरुआत कीनी आम आए इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है ये मौके बिरला कहो कि सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम देरावन सारू खेती बाड़ी आधारित उद्योगा ने बढ़ावो दे रही है वे कहो कि सरकारी मूल माथे गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रिची है श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारू सरकार लगातार जतन कर रही है
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वो गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा या आप बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात की सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो कि मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी जी श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो इस दौरान वे प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलरां सागे बातचीत कीनी तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करण री जरूरत नहीं है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का न्यू लिरीजी परीक्षा री कॉपियां माए मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावण री अर्जी देवण सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो पोर्टल 6 जून ताई खुल्यो रहवेला सीबीएसई रे मुजब ओसु बीतो जांचोड़ी कॉपियां ने प्रति ले चुके विद्यार्थियों सारू मुहैया कराई चियो है दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में आरोपित 5 जना ने जेल में बंद राखण री मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बधा देनी है सीबीआई ई मामला में हाल ताई 13 जना ने गिरफ्तार कीना है ध्यान जोग है कि पेपर लीक रा आरोपा पाछे लाडला महीना भी नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम

0: दिनेश भाई, कहीं हालचाल है?
1: गुरविंदर भाई देखो हालचाल चौका है, बिजलियां पड़ा पड़ करे है न, देखो अब गुड़गुड़ावे है।
0: जून जून महीनो आ गयो,
1: जून महीनो आएगो और यूं लगे है कि बरसात रो महीनो आएगो है, आंधिया आवे है,
0: बरस रो आदिटो आयो।
1: हाँ
0: तो भाई लोगा अब जो को जून रो खास तौर रो महीनो है नी,
1: हाँ
0: दिनेश के भाई किसान जो को है 15 जून रे बाद आसमान री तरफ देखन लाग जा।
1: हाँ।
0: आज तो देखो कई तरह रा मौसम रा भविष्यवाणी हुए, कई तरह रा मौसम संबंधी ऐप है, मोबाइल में भी भांत भांत री सुविधा है, जिनसु पूर्व अनुमान हो जाके भाई बरसात कद हुई, केड़ी हुई, कीकर हुई, कहीं हुई। लेकिन आज मान लो 150 साल लारे जावा जट विज्ञान तकनीक नहीं नी,
1: हाँ।
0: तो गांव में बहु नाली जकी बायरो हो तो नहीं,
1: हाँ।
0: के भाई बायरो किन दिस बे है, नौ तपे में कहीं कहीं सिम्टम आया है, 9 दिन पूरो तपियो कि नहीं तपियो, 9 दिन तपन रे बीच में कटी अंदर तो नहीं आएगी, कटी आंधी तूफान तो नहीं आएगी, या हवा और बायरे रे अनुमानु मौसम रो अनुमान लगाई तो
1: सही क्या हो गुरुंदर भाई, साथे साथे जी का रूकड़ा है वणी जी की कोपड़ा है उनार मैंने बदलाव तो इन रे हाथे हाथे आड़े पाड़े कटे चिड़िया देखो रेत रे मैंने स्नान करती चर चर करती चड़कलिया करे रेत स्नान तंबू सो बतानियो बदलिया आसमान। तो इन तरह रा गुरुंदर भाई कहते ना होता तो ठा पड़ जाओ तक चिड़िया रेत रे मैंने हिनान करे तो हमें मैं बेगो है। तो अपना बडेरा बहुत ही सहज और सटीक तरीके मानसून जो अनुमान है वे लगा लेता।
0: एक बिल्कुल आम साधारण सो सटीक अनुमान हो के भाई जकी मारवाड़ रो कल्प वृक्ष है खेजड़ी।
1: हाँ।
0: तो जिन टाइम के है भाई खेजड़ी रे दरखत रे मायने खोकान सांगरी केड़ी हुई है।
1: हाँ।
0: उए रे माते भी जमाने

0: भाई कहीं अनुमान लगाया जात और जिन टाइम हांगरी या खोका नहीं हुए तो गिल्डा हुए गोल गोल
1: हाँ
0: और वे ज्यादा हुए तो के मामलो हम के मौसम में उतार चढ़ाव हुई इन
1: हाँ
0: गड़बड़ोई।
1: गबा गब है।
0: तो भाई लोग अब क्योंकि विज्ञान आ गयो आपने ध्यान है जिन तरह की आप बारानी खेती करो तो पश्चिमी राजस्थान में मोटे तौर माते मोटो अनाज जो बाजरी है उरी जकी खेती शुरुआत में करे तो आप जका बीज काम में लियो नी
1: हाँ
0: वो में आप आ देख सको कि भाई 60 दिन में पाकन नालो बीज लेनो है कि 90 दिन नालो लेनो है खेती किन टाइम करो उन टाइम बरसात केड़ी है और अनुमान लगा बीज अगर आपन ढंगरो चुनाव करना तो आपनी खेती पाक जा।
1: सही कहो गुंदे भाई। और हाथ हाथ खेतरी आप तैयारी कैडी करी हाँ, जेकी अपने पशुआरी जी की गोबर है वह आप कितनी डाली करी हाँ, खेतरी मिट्टी कितनी ठाडी है, तो इन अनुसार भी देखो बीज रो जी को चयन है किसान भाई टाइम मत करे। साथ साथ मान लो मैं उतार चढ़ाव हुए आगे हुए तो कहीं आप कने पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक जी का सिंचाई का स्रोत है वह है, तो वो लंबी अवधि रो बीज या कम अवधि रो जी को बीज है वो सोच समझन किसान भाई अपने काम लेवे और बम्फर जी की पैदावार है हर साल लगो लग प्राप्त करे।
0: भाई पहला तो पूरो जको मामलो हो ओ बरसात माते टिकियोड़ो और मैं
1: हाँ
0: पश्चिमी राजस्थान ने मैंने वह चीज नहीं रही। एक तो नहर आएगी
1: आशा
0: और नहर आवणु साथे साथे बिजली आवणु नलकूप उगिया
1: व्यवस्था वैसा
0: तो अब पूर्णतः जको मरु प्रदेश हो भी में बड़ो बदलाव आ गयो है। जगह जगह नखलिस्तान हो गया ट्यूबवेल हो गया ट्यूबवेल री फसला होगी और लारले 20-30 साल रे मायने बदलाव प्रकृति में आयो है। दरखत बढ़ गया
1: हाँ
0: तो दरखत बढ़े जना बरसात भी होवे तो हमें कही है कि बिल्कुल के बरसात आई नहीं है तो कठे कठे गांव में पानी की व्यवस्था कर दे के भाई 2 दिन 3 दिन कटे आपा फुआरे हो पाएदा। तो क्यों रो मतलब है कि जको बदलाव आयो उन सब फसला ने पहला तो हाथ खड़ा कर देता किसान गया मैं भाई बरसात ही नहीं है हम करा कहीं
1: हाँ
0: पूरी आंखें रे हाँ में जको है कि वह फसल मेरी उड़ी करते करते बढ़ जाती लेकिन अब जको है ये में काफी परिवर्तन आयो है हमें पानी की व्यवस्था लगभग 50% उगी है।

0: सही कहे गुंदर भाई, किसान भाई जी का है, रात दिन दिनों दिन जी का नवाचार है, ए कर रिया है। चटे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मोटा मोटा जी का होदा है, वे भी देखो कर रिया काज रिया। खेत रो पानी खेत में ने राखता थका, पानी रो जी को संरक्षण है किसान भाई करे। और जिन भगत अब गई वे मैं आग फाचो वे, तो आपने सिंचाई भी जी भी करे। और गुरुंद्र भाई साथ कई आड़े पाड़े माटा माते व्यवसायिक जी का रूकड़ा है, ए भी किसान भाई लगा, आपने जी की आमदनी है उपत है, इन महीने भी देखो बहुत जोरदार वृद्धि करिए।
1: बिल्कुल। और देखो थे बात कही, खेत रो पानी खेत में रहे,
0: हाँ
1: और हमें जो किरी ट्यूबवेल है तो पाइप वो कहीं ओदो बना ले।

0: वो तो बड़ा वो भरन रख दे। तो कई तरह की नई चीज हुई है। दरखत तो भाई दिनेश किनी टाइम लगाओ कम है,
1: सही है।
0: बढ़ती
1: पानी वजन हैंग पन पे हो।
0: बढ़ती हुई जनसंख्या रो दबाव, दरखत ही ऑक्सीजन दे जनाई हो बचाव।
1: सही कहो गुरु भाई, पहला देखा आप अपने गांव रे आड़ पाड़ जेटे बसव टूटी सा तो उठ देखो नीमड़ा होता पीपल होता बटपरक्स होता नडी नडोलिया तालाब बावड़िया होती उठता। हमें आप देखा धुरा धरती रे मैं नहीं मोटा मोटा वटवृक्ष उगा है, पीपल उगा है, नीमड़ा उगा है। अपना जी का जनमानस है ए जागरूक हुआ है, जटे जटे देखो रह रिया कर रिया है, पानी री व्यवस्था है, तो ए जी का दरकत है लगातार लगा रिया कर रिया है। और इन तरह से ए लागेला गुरुंद्र भाई तो पूर्ण रूप अपने अटे जो बरसात रो जो आंकड़ो है इन मैंने बहुत मोटे स्तर माते बदलाव देखने जो मिले।
0: भाई पहला अरावली पर्वतमाला रे बारे में पढ़ता कि भाई मानसून तो आवे है, लेकिन अरावली पर्वतमाला रे उठी ने हरियाली ज्यादा है न उठो कहीं है कि बादल है जो को मानसून विवाचित हो
1: हर हर जाती रे हवा
0: हाँ,
1: जाती
0: लेकिन हमें लाल 10-20 साल में अठी नहीं दरखत होया है नहर आई है तो उन हरियाली की वजह पश्चिमी राजस्थान में हमें वाह जकी अकाल वाली स्थिति है नहीं वाह लगभग लाल 5-10 साल में खत्म होगी।
1: सही कहे।
0: और अगर इन्हीं तरह आप और दरखता माते ध्यान देवा पेड़ पौधा लगावा आउन वाले टाइम में जो अकाल शब्द है वो लोग नैना टावरा ठाई नहीं रेला के अकाल ही कहीं चीज हो। तो हमें भाई देखो कि ग्रामीण क्षेत्र रे महीने खाली आप एक बारानी खेती माते निर्भर रहे वहां तो आज रे टाइम न तो घर चले न परिवार चले क्योंकि मान लो 20-40 बीघा जमीन है वे में आप एक फसल चक्र ले और वही बरसात री खेती माते निर्भर रहो तो भाई घर चलना मुश्किल है। अब बदलाव आयो है तो आपने भी बदलाव लानो पड़ी, खेती रे साथे साथे कई दूजो काम करना पड़ी। ये रे महीने आप कहीं नहीं तो पशुपालन बहुत सहज रूप हूँ आप कर सको दी दूध उत्पादन है घी है और जो को गांव रो घी है तो वह तो भाव ही हल्ला मिले।
1: सही कहे सर।
0: तो आप छोटो मोटो कोई काम करो तो उनमें 2 रुपयारी ओपत हो।
1: सही कहे गुरुंद्र भाई थे। और मैं यूं बात जोड़नी चाहूंगा जो आप बात कही भाई 30 बीघा 40 बीघा तो मैं जो संयुक्त परिवार जी की अपनी व्यवस्था है दिनों दिन जी का खेत री जोत रो जी को आकार है वो छोटो हो तो जा रियो कर रियो है तो मैं अपने कहने कटी 4 बीघे जे कटी 5 बीघे जे तो हमें 5 बीघे मैंने आप खेती करना तो घर पूर्ति भी वह को नहीं जने जो आप बात कही नी कि अभी पशुपालन करो साथ कोई अड़ी व्यवसायिक कोई खेती करो साल 12 महीना वह तो 4 महीना 12 निकल ली 4 महीना बड़कोई कर लियो पचे हाथ पशुपालन कर लियो तो इन तरह गुरविंदर भाई जो थे बातें कही हो बारी जरूरत होगी खास तौर से वे किसान भाई जिन्होंने खेतरा जी का टुकड़ा है हाउ छोटा छोटा बिगम है।

0: एनी तरह जनसंख्या बढ़ती रही,
1: हाँ
0: तो आउनाले 150 साल में खेता में प्लॉट उजी और
1: कई
0: कई,
1: खेती
0: हाँ
1: करा।
0: कई जगह अड़ा गांव है जटे जमीन कम ही लोगा करने, तो उए में हम देखो कि खेती हो ही नहीं रही है।
1: हाँ
0: तो आउनाले टाइम में आपने अभी करना पड़ी कि भी आपने रेवन रो स्थान अलग और खेती रो स्थान अलग और जगह खेत री जकी मेड है उए ने भी आपने मिटावनी पड़ी कि भाई
1: हाँ
0: इन गांव रे मायने 4,000 बीघा जमीन है तो उन्हें एकट करनी पड़ी,
1: सामूहिक खेती करनी पड़ी।
0: सामूहिक खेती करनी पड़ी, जिन तरह यूरोप में अमेरिका रे मायने करे बड़ा बड़ा गांव
1: रूस
0: रा,
1: में रहा,
0: हाँ तो उठे
1: ऑस्ट्रेलिया।
0: कहीं कंपनी सिस्टम है।
1: हाँ
0: लेकिन आप अठे कोऑपरेटिव सिस्टम आते पश्चिमी राजस्थान में हाल हुरू करियो कोनी,
1: हाँ
0: लेकिन महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश में जटे कोऑपरेटिव गांव री सोसाइटी एक्टिव है नी
1: हाँ
0: उठे वो काम शुरू कर सका कि भाई हैंग री जमीन और जमीन री जकी क्षेत्रफल है वो लिख लो
1: हाँ
0: और पछे उए रे मायने खेती बाड़ी करो और खेती बाड़ी रे मायने जकी फसल हुई है और जी तो आप रो खेत है खर्चो कार्ड आप रो हैंग रो हिस्सो मिल जा। उन्हों कहीं है कि आपन ने ज्यादा जमीन है जकी बाबाओं ने मिले और आप अच्छी फसल ले सका अच्छे तौर तरीके हूँ वैज्ञानिक तरीके हूँ खेती कर सका। और ये मैं दिनेश भाई कई एड़ा जगह फल फ्रूट वाली खेती है
1: हाँ
0: वह भी अब पश्चिमी राजस्थान में करण लाग गया, खास तौर माते भाई अनार वाली खेती के बारे में आप होना के बहुत बढ़िया क्वालिटी रो अनार होवे,
1: हाँ
0: खजूर है वह भी उन लागी और पश्चिमी राजस्थान में गांव में जो की सब्जियां होती कोनी उनमें खीरो है ककड़ी है ए भी उन लागी रे सीधी सीधी रोज बाजार में भी आवे।
1: सही कहे गुरुंद्र भाई। साथ साथ पॉली हाउस जी का है आ व्यवस्था होगी कर गई है तो कम पानी है और वाजी को जलवायु है मौसम है उन्हें अनुकूल करता था यह सब चीजें हो रही है। गुरुंद्र भाई आप जी की बात की तो आने दिन महीने ये चीजा हो जाला के हैगला छोड़ तो अपन पानी है कोनी और जट पानी है उठे खेत छोटा होगा है तो अट जरूरत इन बात री बने लागे भाई सामूहिक खेती वेला करेला तो इस देखो के पार पड़ सकेला। और कई एड़ा मोटा बारे यूरोप में जो आप बात बती है देश है तो उठे देखो बहुत ही मोटे स्तर माते उत्पादन होवे और वो जो को उत्पादन हुए तो वे जी का देश है दूसरा देश हर महीने निर्यात करे।
0: बिल्कुल आप अपनी बात करा तो अपने पश्चिमी राजस्थान में मोटो अनाज है जो
1: हाँ
0: बाजरी है मूंग है मोट है गवार है
1: जवार है
0: हाँ जवार है। तो ये ने अगर आपने गांव रे मायने एकट हो नी जकी बढ़िया मिट्टी है बढ़िया रेत है बढ़िया खाद और बीज री व्यवस्था कर एकट
1: एक
0: खेती
1: हाथी
0: कर
1: हो भी बाद है।
0: हाँ हो भी गांव के पूरे जितनी ज्यादा ज्यादा आप
1: हाँ
0: सोसाइटी बनाना आपरी बहुत उम्र थाने रोके कोने
1: हाँ
0: पहला
1: प्रयोग बढ़िया वैसे के।
0: हाँ पहला दिनेश भाई कहीं है कि फसल हो लाटो वाटो लेता नहीं
1: हाँ
0: तो हैंग रहेंग गांव रहा भेड़ा हो जाता
1: हाँ
0: कि भाई आज

0: इरे चाचड़ी तोड़नी है तो हो पचा एक दिन भेड़ा हो,
1: हाँ
0: आज थारे तोड़ दी काले मारे तोड़ दी, इधर सामूहिक रूप में काम करता है।
1: हाँ आज टाइम में जरूरत है गुरुंद्र भाई, देखो विन टाइम देखो काम हो जाओ तो अठाई नहीं पड़ती। और अब देखो के खेती बाड़ी रे काम करने वाला भी लोग कम हो गए। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखा करा कई दान खेता में देखा एक एक दो दो जना काम करे गुरुंद्र भाई, उनमें भी देखो खास तौर से महिला जी की है वह काम काज करे। होना के भाई मोटियार कटे कटी बारे कमो ने गियोड़ा है, कोई गाड़ी माते गियोड़ा है ऐसा, तो जरूरत सी की आप कही होने सा के सामूहिक जी की खेती है। तो हिल मिलन काम करने रोजी को समय है वो आए गए है, जदि आप अपनी जरूरत रोजी को अनाज है धान है दलन है इन्हें आप उत्पादित कर सका।

0: भेड़ा होता है,
1: हैंग भेड़ा ओन बच्चे घर में मान लो दो चार जना तो रोटी नहाग सब्जी बना होता बाकी हैंग अतई हो जाती गांव
0: हाँ
1: रा हुक दुखी पूछी जाता और लाओ उन आग ले रहे खेत में हैंग काम ही हो जाओ तो जो भी छोटो मोटो काम है एक आदमी एक लोग करे एक 10 20 50 भेड़ा मिलन करे वही कहीं के बिना पय करे
0: बिना पैक हाथ ढीला बड़ी करता सा।
1: हाँ तो मन करे तो वो काम ही बेगो निवड़े रहा। मैं गांव में दिनेश भाई आ है कि बड़ियों मिले ही कोनी।
0: हाँ ढीला बड़ी की जरूरत है हमें।
1: हाँ मैं काम करने वाला आदमी री गांव में बहुत पूछ और जका काम नहीं करे बे आपने बढ़िया हाले तो मैंने पूछा भाई कितना ले तो उरो ही पार कोनी।
0: 10 बजे आमनो।
1: हाँ 1000 रुपया ही मांग लेन आवे 9 बजे रो केर आवे 10 बजे
0: हाँ
1: आओ न के भाई चाय पाओ और मारे फलानी बीड़ी लाओ और मारे और लाओ पहला तो उए ने नशो पतो करा
0: तैयार करो।
1: तैयार करो पछे
0: हाँ
1: उए ने कलेओ कराओ पछ के भाई हूं कले और बाद आधो घंटो भी उणी लियो
0: हाँ
1: जीते पछे दोपरो कराओ पछ शाम रो भड़े कराओ। तो कुल मिलार एक आदमी जको बड़ियो लावे उ वास्ते तो एक आदमी पूरे दिन पग्गा उबो रहे
0: हाँ
1: तो वो बड़ियो कई भाव पड़ियो।
0: सही कह सचार बसते विनो जी को नसो पतो उतर जार गर्द के ने मुंडो करे सा मैं तो जाऊं
1: उमे आ के काले बुलावणो तो आज रा मन दे दो
0: एडवांस।
1: एडवांस पे दे दो और एडवांस नशेरी चीज भी मने आज दे दो जना तो हूं काले आऊं
0: हाँ
1: नहीं तो भाई काले मैं नहीं आऊंगा।
0: देखो गुरुंद्र भाई गर्रा जी का मानस वेला तो इत खेती वे सके और जो आप जी की खास बात बताइए एक भाई जरूर हमें डीला बड़ी रही है सामूहिक खेती रही है जदीज खेती रो काम काज पार लागे।
1: तो दिनेश भाई अतई गणी होगी
0: हाँ सा
1: और हमें कार्यक्रम रो भगत हो रियो पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करण सारू आप रे साथी गुरविंदर विष्णु
0: और दिनेश राणे जाने सीख दे रहो। राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: आ बात है, क्यों देखा जाए तो कुदरत रखेल है
1: खेल है।
0: ना।
1: हाँ जी
0: मैं
1: बात
0: बात
1: है।
0: है नुस्खा नाली, तो भाई देखेगा तो मूती रे इन करती रही इन थे कोई आज झूम के पहली पहलवान तो ही को नहीं। कई बार कई है जिनको कह नहीं एक पहला कोई काली बड़ी आंधी आई
1: हाँ
0: आज कई पर पहला जो भाई रे कुत्रो नहीं वो सूम तो ही को सोडियन
1: सब उड़
0: थे
1: गई।
0: बा उड़गी थोड़ी फलकी ठीक भाई उड़गी
1: और
0: पालो लालो नौजी
1: हम कह
0: को
1: तो नवलोबा कह रोकड़ा एक घना पड़िया है ड्रा
0: हमें तो
1: आंदे
0: देखे भाई आज नौ तपे पूरा दिन होगो और क्या नौ तपो तपियो हो तो बड़ा क्या फायदे हेलो हो
1: ना तपन तो दियो को नहीं हमें मौसम।
0: तपन तो यूं देखे भाई के कुदरत रो निजाम है नी वो सबर बात है बरोबर है
1: हाँ आ तो
0: हेलो
1: बात सही है।
0: तपी तो देखे पंख पंखेरू है बारी है जो कह नहीं कि भाई देखो प्राण पंखेरू उड़ जाई आने क्या जिंद्रोईरा जिनावर है बारी है जो कह नहीं पीऊ ने पानी सही जे
1: हाँ सही जना
0: मीनिंग
1: बाबा।
0: तो है जो कह नहीं कटी बेरे बेरे में भली बावड़ी में पानी हुआ तो ही है जो नल बेरा खोला अन पानी है हींच लेन पानी है जो खोगड़ो घणो करे तो
1: करे नवलोबा। हाँ जी
0: कुदरत
1: बाबा।
0: नहीं री तो आवी है
1: हाँ
0: पर
1: रे तो
0: ये
1: आवी है
0: आंधी
1: नवलोबा।
0: तूफान आई है भाई देखे उतरा दे भाकरा में है जो कह नहीं के उठे बाबर पड़ी उड़ी रहे जो बर्फ ओले ओले ओले ओले बाप पिघले नहीं जरे पर बात थे हरिद्वार आवे हरिद्वार आवे भाई वो तो कई बार है जो को हम पड़ो कर नायो आन है जो को कह निर्मल जल में भाई मंदड़ो है जो कह नहीं के शरीर तो हेड़ो ताजो हो पर मंदड़ो है जो कई दो चार चीजा छोड़ी इन पाज ढाणी आया पाज पगड़ी जी
1: ओ लो नवलो बा।
0: वो कपट रह गो मन में
1: हाँ जन छोड़े इन पाज पकड़ दी।
0: पर जीव रही हो कोनी भाई जो बाद में कह नहीं कि भाई कई पाल गोट हुई कोनी पड़ा है कोई पाप ही है
1: हाँ है
0: समझो
1: नवलो
0: तो
1: बा।
0: कहीं है पाप ही हो गंगा जी गया लुटू जान है जो कह रही संकल्प लियो अन मंदरो घोड़ो कंट्रोल लियो नहीं जिस पाचा भाई शहर तो कई पाचा डुड़न रुक जा हूँ मारे माते कह तो मुतबल हम जियो कोनी हूँ तो घना
1: हाँ
0: मिन गरी बात करूँ
1: हाँ
0: दूजा ने कहूँ थारो मार नाम लूँ तो थे मारूं कड़े करो
1: हाँ सही
0: तो
1: है।
0: भाई बहता हुआ ही कूं पड़ा है कि उठे जान हम पड़ो करे नहीं करे पर वो मैल है जो कह नहीं के वो गंगा जी में है जो
1: हाँ
0: उतर जा
1: उतर जा। हाँ जी बात है
0: ए
1: नवलो।
0: कह नहीं शरीर रो मैल तो उतरे पर मन रो मैल नहीं जा जिते की
1: के नहीं वे नवलो बा। हाँ जी
0: क्या
1: बात है।
0: उसमें
1: मंदरो
0: क्या
1: मैल जावनो जरूरी है।
0: क्या उसमें क्या कपटी नर सुधरे नहीं सौ संतन के संग
1: हाँ
0: और मुझ भिजो वो गंग में तो भी तंग की तंग
1: तंग की
0: खबाओ जा
1: तंग।
0: कोई
1: हाँ अच्छी बात
0: तो
1: है।
0: ओ गीत रो भाई थारे हुनता हुनता आउनो को मुतबल है
1: मतलब हम थाने हुणा तो आए हूं नवलो बा
0: ना तो मैं तो भाई देखे थारे बार ले पाड़ू कह के बाद
1: थे हुणिया नहीं
0: तो
1: दड़ो।
0: हाँ हुनियो दो आंगड़ी तो मन पहले पूरो हुणा घंटा
1: लो
0: में
1: हुणो
0: और
1: नवलो बा
0: मिट्टो कड्डो लागे भाई
1: लो हुणो।

0: अध्ययन करी और उट पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय छात्र।
1: भाई देखे हर जड़ी बूटी में रस तो है ही है। और वो रस की बीमारी में काम आवे, शरीर वास्ते फायदे में।
0: हाँ।
1: तो आनी कोई नहीं भूल सके, जग सावा काम करिया, कोटि कोटि नमन है, मंदलेरा फूल चढ़ावा।
0: बड़े बड़े हम देखो नवनबा विश्वनाथ दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी हा, राजनीतिज्ञ हा, और भारत जिन टाइम अपनो आजाद यो नी, आजाद यो पहला जो को ओडिशा प्रांत हो, ओडिशा प्रांत रा उन टाइम मुख्यमंत्री रिवड़ा है।
1: ओ ठीक ठीक, अंग्रेज राज
0: हाँ,
1: में
0: हाँ,
1: अंग्रेजी बनाया सा था सब आप हिसाब रा राजकाज में भागीदारी करी ही। उन टाइम है जो बार अंग्रेज हाथ लिया तो उन हिसाब हूँ आप काम काज करिया।
0: हाँ।
1: तो एक काम तो करिया ही है, बैठ गया तो कोई भूले को नहीं
0: भूले
1: नमन है मंदलेरा फूल चढ़ावा।
0: हाँ।
1: भले
0: भले देखो हम नवलोबा तो बताऊ मैं आज दिन जो को जन्म युड़ा जो को तो आज दिन नवलोबा देखो इलैया राजा ए भारत रे एक महान संगीतकारों में एक हा। तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ हिंदी फिल्मों में अनु तो जो है आप संगीत दियो और संगीत रा ज्ञानी नाम अनजानी जिया करे।
1: हाँ जी बात है भाई देखे एक तो संगीत बजे तान से और क्या राजा इलैया मारे क्या भाई पाउंडा मारा भरियुड़ा।
0: हाँ, और अनुसरण करिया।
1: हाँ करिया। तो आनी कोई नहीं भूल सके, कोटि कोटि नमन है।
0: हाँ।
1: मंदिर डेरा फूल चढ़ाऊं बड़े
0: बड़े देखो नवलोबा के आज दिन जन्म जयंती है अनंत गीते जी जो है नी नेता है और कई बार सांसद रह चुका है और जो है जनता की सेवा कर रही है।
1: हाँ कर रही है, भगवान ने हजत हजा रखे हर छो का काम करता रहे, लोगो ने क्या नहीं हर देता रहे।
0: हाँ।
1: तो आने कोटि कोटि बधाई है। और बड़े
0: बड़े नवलोबा देखो आज दिन जो है जन्म जयंती है एक महान व्यक्तित्व तो है अपना और भारतीय उद्यमी है।
1: हाँ।
0: नंदन नीलेकणी जी तो जो हमारी दूरदर्शी सोच रू डिजिटल इंडिया री नींव राखी और डिजिटल इंडिया री नींव राखून हाथे रहते देखो के उद्योग क्षेत्र में भारत ने अग्रणी देश बनाने वास्ते काम करियो और अपन जो को एक डिजिटल पहचान है नवलोबा आधार जो को 12 नंबर जो एक यूनिक पहचान है नी उन आधार
1: आधार कार्ड
0: उनका जनक है नंदन नीलेकणी जी।
1: ओ ठीक ठीक, ये तो सूचना क्रांति करी।
0: हाँ सूचना क्रांति।
1: आज मैं रेल में टिकट कटा रही कराओ तो वे है कटी कटी पया मेलो तो वे है तो एक कामड़ा तो कह नहीं भाई जानकार मिनक है जो करिया
0: जानकार मिनक है
1: तो जो भगवान आनी हजरत हजरा के कोटि कोटि बधाई है।
0: बधाई है
1: अपना देश रिवाज चौको काम करता रहे।
0: हाँ।
1: बड़े
0: बड़े हमने को नवलोबा डोला बंदर जी एक भारतीय महिला खिलाड़ी है जो तीरंदाजी में प्रतिस्पर्धा करे और देश रो नाम है अभी रोशन करे।
1: ओ तीरा सोले।
0: हाँ।
1: ओ ठीक ठीक है, तो क्या नहीं भाई वनवासी आदिवासी तीर कबाड़ होता आजकल नवा बनिया है देश वास्ते क्या नहीं खेले कूदे तो तुकमान लावे तो आनी भगवान हाजत हाजा रखे और आने कोटि कोटि बधाई देवा। बड़े
0: बड़े देखो नवलोबा मणिरत्नम जी भारतीय सिनेमा रे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता और निर्देशक और पटकथा लेखक है। तो 1956 में और जन्म यो और कई हिंदी री काल जई है जो फिल्मों है कावे आपने जो दिल और मत अमिट छाप छोड़े।
1: हाँ, जुगो जुग जो है
0: जुगो। हाँ, याद रखे जड़ी फिल्मों है निर्देशन करियो
1: तो भगवान आनी क्या नहीं हाजत हाजा रखे कोटि कोटि बधाई है।
0: हाँ।
1: और आनी कोई क्या नहीं अड़ी फिल्मो बनायेड़ो वह तो कोई फिल्मी वह तो उन्होंने कोई गीत लो हुआ तो
0: लो हुआ नवलोबा।

0: ओहो, वो तो भाई देखे गीत जोर हो बाल तमको जान से प्यारा,
1: जान से प्यारा,
0: जान से प्यारा है भाई।
1: तो कई अड़ी देशभक्ति फिल्म ही जो है फिल्म ही और है बनाई।
0: अरे भाई देखे दिखना दे उतरा दे आओ नी जिते क्या नहीं के जे थे कन्या कुमारी बीर होया वो तो उठू देख रहा हरु करो तो भारत देश की क्या नहीं की न्यारी न्यारी रचना है। लोगा रा क्या नहीं की पैरवास नारा खान पान नारा बोली चाली नारी और हर बात हूँ देखो थे हूँ तो कई बार कह नहीं फिर तो गिर तो जाओ तो नहीं जब भाईड़ा जी हो रो हो तो
1: भारत हमें तो देश है
0: भाई थे कन्या कुमारी है जो कश्मीर तक कच्छ लेन कोई मत
1: तो हम देखो नवलो अपने अटक है नौ तो उत्तर भारत में चले न कटी पूर्वी भारत में बारिश हो रही है कटी बर्फ पड़ रही है
0: तो हम देखे भाई कुदरत रो खेल है क्या नहीं भारत देश माते अन्नो को है और क्या बात देखो भारत भूमरी कह नहीं के भूमि है आ तो भाई कह थे क्या के जग चावी कहीं संसार में सिरे है और अटे कई सी नहीं है
1: नहीं है सब है अटन अब
0: हाँ सब है कह दियो नहीं के अटे मिन गह जिगो कह नहीं के वो कह भाई
1: देव रूप में
0: है कोई नहीं तो वाह भाई हमें देखे नरेश माने कोई देव रूप रो कोई अर्जिशियो होना देगा नहीं
1: बढ़िया अर्जिश होना होता ना
0: बढ़िया होना भाई
1: लो नवलोबा।

0: वाह भाई रे वाह, हमें मालक है नहीं चित्रो
1: ठाणे घोड़ो ठाणे आग उतारे
0: मंदिरो घोड़ो ने ठाणे हो जानी।
1: हां
0: हमें मैं आंधी रा दिन है भाई, पर हूं आ बात कहूं के चार दिन ठीक है कि भाई देखो थोड़ा घना बादल गया हुईड़ा है, पर भाईड़ा हमें देखे कि मेरे डीलर फूंका मत दे, डीलर फूंका दी तो बारे मुसार किया लड़की नहीं जाए। हमें देखे चंद्र के जान आप खेत में हुड़ हपाड़ कर दो, कोई बाढ़ कांटो हावड़ है जो क्या कर दो, और थोड़ा खाद हाद कह चुके ढीला पड़िया तो ट्रैक्टर भर ले जान खेत में नैगन पाच कल्टी हल्टी काट दो तो उन्होंने कही हरे भाई बेड़ा रे भाई मोती निपजी। हमें अषाढ़ महीनो
1: है
0: तो भाई भरो मत भरो मोड़ो भरो भेगो भरो बरी बरी होशाई गया थे क्या मैं हो या पच मैं यूं कर दिया यूं कर दिया तो पच भाई लारू भाई उड़ी फिंसा में लाग
1: ना हाँची बात है
0: ये बात तो कहीं है हाल से द्रो और घर कमाओ तो लोग ही हिराई और नहीं तो कोई मुंडे लगे हुए हैं कोई बात ही बात है भाई क्या काम प्यारो नहीं है काम प्यारो है।

0: तावड़े में अपन कटी भू तो नहीं फिरनो
1: हाँ नवलो
0: और अपने घर में जिकी अपन ठाडी चीज है सा राबड़ी है दही है भाई जीम तारो अपने कांदो खा लो और जे घणी कोई काम होगो
1: हाँ।
0: तो भाई देखो कटी आओ जाओ कटी फटफटी मा जाओ ट्रैक्टर मा जाओ कटी जाओ नी
1: हाँ।
0: तो कह नी दबटी हूँ आपरे गुदी है जिको हावल
1: काबू
0: कर लो और नहीं मैं तो कोई टोपी पहन लो सब आप थे कहीं थे बनगा पापा अन उड़गा थारा सापा
1: सापा तो हमने फेरे ना वो बात
0: नहीं फेरे तो की कोनी बाहर देवार नो कह नहीं ब्याह बदन तर हो वाह भाई रे मैं यूं कर बात तो हम कह दी मुंह थोड़ी की कड़वो बोल गो थे नाराज हो जाओ
1: नहीं नहीं ना वो बात रसो
0: हम तैयारी कराओ और हूँ फेर लू माला
1: आओ फेर
0: और माला फेर बैठो हूँ जिस से रसोड़ो करा दो पको और मैं देखे तारे खासा ऊंचा आएगा है और मैं आंधी रा दिन है भाई देखे है जिसको कह नहीं के भाई दिन बदगो
1: बदगो
0: और प्रोग्राम टाइम होगो पूरो तो भाई से लेवा ही
1: राम राम, राम।

ग्रामीण जन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए पहला गीत आपको सुनवाते हैं 1942 लव स्टोरी। इस फिल्म से कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, जावेद अख्तर के बोल हैं आर डी बर्मन का संगीत।

आइए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत दिया है। फिल्म का नाम है संघर्ष।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा है ये गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गौहर कानपुरी का लिखा ये नगमा, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाजें हैं। बाजीगर फिल्म से हमने ये गीत लिया है।

चित्रा। इनकी आवाज़ में आइए सुने तुम बिन फिल्म से ये नगमा। फैज़ अनवर ने इसे लिखा है, निखिल विनय का संगीत है।

आइए जमीर काजमी का लिखा ये नगमा सुनते हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम है विजय पथ।

अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें हैं इस गीत में। दिलवाले फिल्म से ये गीत हमने लिया है, समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: दिलवाले फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नोमैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं।

0: संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग

0: प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के दो वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2-3 branches also. वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम

T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जावेद अख्तर का कलाम था, जगजीत सिंह की आवाज।
1: तेरे खुशबू में बसे खत

इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। ये गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने फिल्म चोरी चोरी के लिए।

आइए शैलेंद्र का लिखा है, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये नगमा सुने। तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है आवारा।

शैलेंद्र का लिखा ये गीत आइए अब आपको सुनवाएं, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। फिल्म का नाम श्री 420।

आह फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म से ये नगमा अभी आपने सुना। मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था।

अनाड़ी फिल्म से आइए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये नगमा आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन ने इसे संगीत से संवारा है।

आज की फिल्म संगीत में सभी गीत समर्पित थे राज कपूर को। 2 जून 1988 को

उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। फिल्म संगीत आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आपणो राजस्थान, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अब रिले किया जाएगा।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अंशदान आकाशवाणी अलवर का है।

0: राजस्थान में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा अलवर जिला अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक किलों के लिए राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। महाभारत कालीन मत्स्य देश के रूप में प्रसिद्ध यह शहर अपनी अनूठी विरासत, कला और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान में अलवर अंचल की विशिष्ट परंपरा रही है। अलवर न केवल शासकों की, विद्वानों की, अपितु पौराणिक ऋषियों की भी तपोभूमि रहा है। वैदिक ऋषियों मांडव्य, पाराशर, अंगिरा, लोमश इत्यादि ऋषियों के मंत्रों से अनुगूंजित यह भूमि सदैव देववाणी की पोषक रही है। अलवर क्षेत्र का लोक संगीत यहाँ की समृद्ध संस्कृति का मुख्य आधार है। यह संगीत स्थानीय इतिहास, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता को जीवंत रखता है। लोक संगीत व वाद्य यंत्रों का यह संगम स्थानीय त्योहारों में एक नई उमंग भरता है। अलवर की थानागाजी तहसील के आसपास नेहरा गीत, जिन्हें स्थानीय भाषा में नवेदा, नेहरा, नेड़ा भी कहा जाता है, ये गीत विशेष रूप से गुर्जर, मीणा और अन्य ग्रामीण समुदायों में गाए जाते हैं। थानागाजी के क्षेत्रीय लोकगीतों में नेहरा का एक प्रमुख स्थान है। ये मुख्य रूप से रसिया, ढफ या दंगल की श्रेणी में गाए जाते हैं। इनमें स्थानीय वीर गाथाएं और स्थानीय लोक कथाओं का वर्णन होता है। आइए सुनते हैं धवले राम मीणा और साथियों के द्वारा गाया गया ये शबरी प्रसंग।
1: भाई सबर भूप के धाम जन्म सबरी ने लिया और बालापन से लगन ध्यान भक्ति में दिया। राजा सुनो बोली रानी सबरी होती आई सियाणी। आचो ठोर ठिकानो हेरा कर दे भाव पाड़ दे फेरा। खबर ये सबरी ने सुन पाई भाजी मैया कह ढंग आई मैया।

सत्य भजन भगवान को जैसे बेड़ा हो जाए पार के बैठी बैठी फेरूंगी, अरे बैठी बैठी फेरूंगी बनी में माला हर की।

सबरी तो नाटी घणी वा को बाबुल मैनो नाई और करी सगाई तुरत ही देख ब्याव दी और पुआए शादी के नृप ने बंदोबस्त करवाए पीने के हित मदरा के घड़ा भराए भोजन के लिए भैंसा बकरा मंगवाए मृग सुअर स्यार खरगोश बहुत बंदवाए सबरी बोली सुन में है तारी मोकू बात बता दे सारी मारे घर के पछवाड़े में कैसे बंदे पशु बाड़े में सुन कर के सबरी की बाणी नो समझा बेला।

नानी, ये बाले के बने पिरानी, इनकी दो दिन की जिंदगानी, तेरो भ्याव करेंगा स्यानी, और इनकी बने रसोई वादन मर जावे ये प्राणी। सबरी बोली सुन महतारी, सबरी बोली सुन के बानी, बाबुल क्यों बन रहे अज्ञानी, मैंने मना करी नहीं मानी, और मेरे पीछे मैया बिरथा मरे सैकड़ों प्राणी। ऐसो भाव मोय ना चाहिए, ऐसे मेहतारी से खइए, मैन तजे तजो कुटम परिवार त्याग दिए बाप और भैया।

जंगल को ले लिए पंत रटे भगवंत हे तेरे रघुबर से नहीं होय गुरु बिन ज्ञान सोच रही मन में कोई संत बनानो चाहिए गुरु विपन में संतन दिन सबरी घूमत फिरे अकेली कर जोर कहे महाराज बना लो चेली भीलनी अपनी जात बतावे जब संतन को गुस्सा आवे तू दिन उठ के पाप कमावे तो कुचेली कौन बनावे सांची खेपुन ने भेकाई मारी धूनी पे क्यों आई जाने तू के ना की नहीं तो कुतनक शर्म नहीं आई कुटिया पैसू पहना बढ़ जा और अशुभ भेष खुल रहे केस तू न्यासू लम्बी पड़ जा वाकी भारी करी पिटाई और मार पीट करके संतन ने सबरी दूर भगाई ठाडी ठाडी सोचे मन में मेरा कौन धनिया बन में मैं घर को उल्टी नहीं जाऊं ये संतन को किसा मनाऊं हे रघुबीर आसरो तेरा बेड़ा पार लगा दे मेरा मन तजे जगत के भोग सटा दे धरो तुम्हारो ध्यान और सबरी

0: थानागाजी के इलाकों में नौदा दंगल बहुत प्रसिद्ध है। इनमें दो अलग अलग मंडलियां या गायक आमने सामने बैठकर सवाल जवाब की शैली में इन गीतों की जुगलबंदी करते हैं। नौदा के अलावा थानागाजी क्षेत्र में विवाह के गीत जैसे बन्ना बन्नी, बिंदोला, बधावा और सावन भादो में मल्हार जैसे हिचकी, लांगुरिया, पणिहारी और ऐसे ही बहुत से गीत गाए जाते हैं। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं माता दीन और साथियों द्वारा गाया गया ये लोकगीत।
1: ए हे, बोलो भर मतवाड़ा।

नागपुर के आसपास के इलाकों में बहुत प्रिय है, जो स्थानीय बोलियों में गाए जाते हैं। मीणावाटी गीत यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। ये गीत मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं ग्राम बाछड़ी तहसील थानागाजी की महिलाओं द्वारा गाया गया यह सुंदर मीणावाटी लोकगीत।

मीणावाटी लोकगीतों में प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत हैं टेर या रसिया गीत। ऊंची आवाज में गाए जाने वाले इन गीतों का उपयोग मुख्य रूप से संदेश भेजने या देवी देवताओं को रिझाने के लिए किया जाता है। अगले आते हैं पढ़वाड़ा गीत, जो कि अलवर क्षेत्र के मीणा समुदाय में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कथात्मक गीत होते हैं जो स्थानीय इतिहास, वीरों की गाथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं। मीणावाटी गीतों में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं हास्य और व्यंग गीत। इन क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर आधारित हास्य व व्यंग गीत भी काफी पसंद किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं हीला ख्याल, जो कि मीणा समाज का सबसे प्राचीन और पारंपरिक लोकगीत है। इसे यहाँ के लोग बड़ी ऊंची और लंबी आवाज में गाते हैं ताकि दूर दूर तक बैठे लोगों तक यह पहुँच सके। राजस्थान में रामजीलाल मीणा और काना राम थली जैसे कलाकारों ने मीणावाटी गीतों को काफी लोकप्रिय बनाया। इन गीतों के माध्यम से मीणा समाज के गौरवशाली इतिहास और पूर्वजों की गाथाओं का बखान किया जाता है। चले सुनते हैं एक और खूबसूरत सा मीणावाटी लोकगीत।

0: बात हो अलवर के प्रसिद्ध लोकगीतों की तो राठ क्षेत्र के लोकगीतों को कैसे भुलाया जा सकता है। अलवर के राठ क्षेत्र बहरोड़, मुन्नावर, किशनगढ़बास, कोट कासिम के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से अहीरवाटी और मेवाती लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ के प्रमुख गीत स्थानीय मेलों और त्योहारों में बहुत उत्साह के साथ गाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोक नाट्यों और मेलों में अलीबख्श ख्याल और महाभारत से जुड़े प्रसंग, ढोला मारू और राजा भर्तरी के गीत भी गाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं राठ क्षेत्र का यह प्रसिद्ध लोकगीत जिसे गाया है मनु श्रवण और साथियों ने।
1: ए रथोड़ दे कोली इस योद्धा की,

इस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत और संगीत परंपराओं में बारी आती है सबसे पहले अली बख्श ख्याल की, जिसे कि अलवर का रम्मत भी कहा जाता है। मुनावर के नवाब अली बख्श द्वारा शुरू की गई यह संगीत शैली में ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो सामाजिक जीवन मूल्यों को दर्शाती हैं, जो राठी अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों का सुंदर गाया ये गीत।

अहिरवाडी लोकगीत मुख्य रूप से अहिरवाल यादव क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन गीतों में यहाँ की संस्कृति, वीरता और लोक कथाओं का चित्रण होता है। ये गीत मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और वीर रस पर आधारित होते हैं। चलिए सुनते हैं यहाँ मदनलाल यादव और साथियों द्वारा गाया यह लोकगीत।

0: समय का चक्कर चौरासी सुबह गुरु गोरख जी डांटा था, ये उस मौसी के दर्शन खातर कद पूरन मलनाट्या था।
1: उस मौसी के दर्शन खातर कद पूरन मलनाट्या था।
0: ये धन माया का भरा खजाना, ना धन का घाटा।

0: समय के कारण हरिश्चंद्र ने सत भंडार भरे थे। यार एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे।
1: अरे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं गिरे थे।
0: यार लड़का राजा रानी तीनों घर से बाहर करे थे। यार राजपाट सब खोस लिया बाकी सो बाहर करे थे।
1: राजपाट सब खोस लिया बाकी सो

श्रोताओं, अलवर की संस्कृति में कुछ क्षेत्रों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ब्रज लोक संस्कृति से जुड़ा एक लोक भजन हम सुनते हैं, जिसके कलाकार हैं नरसी शर्मा और उनके साथी।

बात करें परंपराओं की तो रसिया और बन्ना बन्नी को कैसे भूला जा सकता है। त्योहारों के अवसर पर रसिया गाए जाते हैं जो ब्रज संस्कृति के प्रभाव को दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं मामन चंद गौड़ और साथियों की ये मनमोहक प्रस्तुति।

0: अलवर के लोक गीतों की श्रृंखला में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं मेवाती क्षेत्र के लोकगीत। और बात करें यदि यहाँ के लोक गीतों की, तो पहला नाम आता है रतबई गीतों का, जो कि मेवात क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। इसे प्राय वर्षा ऋतु या शाम के समय भपंग वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम प्रसंग और स्थानीय वीर गाथाओं का वर्णन होता है। मेवाती लोकगीतों की आत्मा यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। इनमें भपंग और सारंगी सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें मेवात के जोगी बजाने में सिद्ध हस्त होते हैं। इसके अलावा नगाड़ा, खड़ताल और ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। आइए सुनते हैं हम उमर फारूक मेवाती और साथियों के द्वारा गाया गया ये मेवाती लोकगीत।
1: अरा भबूड़ा में अरा हुआ थी दादा।

0: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चप्पी मर घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चप्पी
1: घड़िया सुमट की बड़ी रामाट भी चप्पी।

0: अब आपको हम सुनवा रहे हैं गफरुद्दीन मेवाती और साथियों द्वारा गाया गया मेवाती लोकगीत।
1: मेरो नथ को मोती चमकी रहो रे दिल जानी, मेरो नथ को

मेवाती लोक संस्कृति में लोक गाथा एवं किस्सों का भी प्रमुख स्थान है, जिसे शामिल किए बिना लोक गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम अधूरा है। आइए सुनते हैं नूर मोहम्मद मिरासी व साथियों द्वारा गाया लोक गाथा पंडुवन का कड़ा की ये प्रस्तुति। यह मेवात का सबसे प्रसिद्ध लोक महाकाव्य है। प्रसिद्ध शायर साधु अल्लाह द्वारा रचित इस गाथा में महाभारत के पांडवों की कथाओं का मेवाती लोक शैली में वर्णन किया गया है, जिसे स्थानीय जोगी और मिरासी सारंगी की धुन पर गाते हैं।

नहीं पीती आपको लाख जाने कहीं के ले भाई राजा अर्जुन ढाट अपना लेके राजा अर्जुन निपीतिया को कहां चलता हो जाता है जेत खम पे जाकर याने जेत खम के पे जिंदो गज का दियो ओ

मने कही रे राजा से दियो हो दे भाई तेने नू कही निपीतिया लार गचका दियो तेने नू कही कि जग जो नार दियो जग जो नार दे दी अगर कोई बाकी हेरी हुए वाय और बता दे। राजा सहदेव ने कही के भाई मैं कहा बताऊं भेद बतावे भेद देखन दियो और या ने भेद खोलो भेद खोल के और या ने राजा अर्जन बुलायो। राजा अर्जन हाँ अभी तो बहुत कसरे। राजा अर्जन बोलो के भाई तू आ कसरे मेट ले और कुछ हो जाए बता दे भर भर की रामायण मत राखे जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे। राजा सहदेव वेद देख के क्या राजा।

Econo. Vet khol ke aur yahan ne Raja Arjan bulayo. Raja Arjan ha, abhi to bahut kasre. Raja Arjan bolo ke bhai tu a kasre miet le. और कुछ हो जाए बता दे, भर भर की रामायण मत राखे, जो कुछ बात हो जाए तू एकदम बता दे। देखा राजा सहदेव वेद देख के क्या राजा जरजोत को बताता है क्या कहता है।

का राजा सहदेव? कौन से राजा अर्जुन से? राजा अर्जुन, मैं तो या वेद की बात बताऊं, अर्जुन जब जग पूरी हुए लोकनी चले जावे, सेहत बली शिकार मार के वाकू डावे, और आगे नागरद मसान हेवा समतल नागुवल, इमरत आवे लोक पताल सू, अर्जुन तेरी जब जग पूरी हुए। ओ भाई राजा अर्जुन, मैं आपको बात बताऊं, ये वेद की बात है, सेहत बली की शिकार पैसा लोक सुआएगी, वासु तेरा सारा काम शुद्ध हो जाएगा, चलो जा। राजा अर्जुन ने कही के मैं ही जाऊं, कोई सा और ले जाऊं। सहदेव बोलो के यार एक सू दो भला, कोई सा और ले जा। तो जाए ना कौन राजा अर्जुन भीम के सामने क्या एक दोहा को पेश कर तो है।

जाके यार ये सब रोटी रहा मैं इन सुबह ना रुके कि भाई तू ही चल नाच गो के मैं ना चलू यार भूखो पिसाए परेशान रहू के ना भाई तू चल। तीसरा को कहनो राजा जन को कदी भीम ने ना डोटो तो बकार भीम और राजा जन दोनों का दोनों कहां चलते हो जाते हैं पाताल लोग। आगे आगे राजा अर्जुन पीछे पीछे भीम और ये पाताल लोक में पहुंचा। भीम की नजर पड़ जावे देखे तो गेंडान की डार आ रही है। ये बोले रे राजा अर्जुन कहां जा रहे हो तू यार गेंडान की शिकार लाएंगे कही कहा ओरे के यार गेंडा ये तो है कि भाई मैं तो जानू भी ना कि ना मैंने पहले भी देख रखा है भाई ये कि तो यार अब देर कहा है जल्दी हो जाएगी कि सही बात है तो कि तो अब तू इतना काम कर ले कितना कौन कहते हैं भीम कौन से राजा जैसे क्या बात होती है।

0: श्रोताओं, अलवर के लोकगीत यहाँ की मिश्रित संस्कृति, प्रेम भक्ति और प्राकृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये लोकगीत और लोक गाथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि स्थानीय जीवन शैली, आदर्शों और पीढ़ियों की मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। अलवर के लोकगीत क्षेत्रीय पहचान और लोक जीवन का दर्पण है। ये गीत न केवल ऐतिहासिक चरित्रों और कथाओं को जीवंत रखे हुए हैं, बल्कि अलवर की पहचान को संगीत और मौखिक परंपरा के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अनूठी छाप देते हैं। आशा है कि आज का हमारा यह लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर के साथ आपकी हमसफर रही मैं अर्चना जैन। आलेख था डॉक्टर भीम सिंह जाट का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री नीरज भगत।
1: आपड़ो राजस्थान, अभी आप सुन रहे थे अलवर के लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम। अंशदान आकाशवाणी अलवर का था और इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: समय रात्रि के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: Desist from making any comment on them.
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात

0: others were injured. This marks one of Moscow's largest assaults in the recent months. President Volodymyr Zelensky said civilian infrastructure and energy facilities had been targeted across the country. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये दूसरी सभा अब संपन्न होती है। सवेरे 5:53 पर पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।